ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 17, तदनुसार 7 जून सन 2026। इस समय प्रातः के ठीक 5:58 हो रहे हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: FM के 102.4 MHz पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है, समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the Economic Advisory Council discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. The Home Minister also directed an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with a ruthless approach. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar virtually handed over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal under the reconstruction program post-2015 earthquake after meeting with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi. The two leaders jointly launched the linkage between UPI India and National Payments Interface of Nepal for facilitating cross-border personal remittances. Both leaders also witnessed the exchange of a memorandum of understanding between Digital India Bhashini and Kathmandu University for co-creating the national digital infrastructure for a voice-first language translation platform for Nepal. In his opening remarks during the meeting with Mr. Khanal, External Affairs Minister said that India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need.
3: Collaborate closely to maintain security our long and uniquely open border. Our two countries have always stood by each other in times of need. In the wake of the ongoing crisis in West Asia, the Middle East, we have ensured uninterrupted fuel supplies to Nepal. The importance accorded to this relationship by both sides has only recently been demonstrated. We believe that today there is opportunity to decisively shift the trajectory of India-Nepal relations and to realize the full potential of our ties.
2: The National Testing Agency has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of the NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, the agency said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has said that BJP government will undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state, such as Dakshineshwar and Kalighat temples. Speaking at a program in Kolkata, Mr. Adhikari said grand arrangements will be made for the upcoming Shravani Mela at Tarkeshwar. Hitting out at the previous Trinamool Congress administration, the chief minister alleged that West Bengal suffered from acute lack of employment opportunities and systemic corruption over the past 15 years. In the one-off test against Afghanistan, India will resume play at 368-3 in their first innings on day two in New Chandigarh today. Centuries from KL Rahul and Captain Shubman Gill, who remains unbeaten on 103, have put the men in blue in a strong position. Sai Sudarshan also contributed 81 before missing out on a maiden test century, while Rishabh Pant remained unbeaten with a brisk half century. In hockey, Indian men's team has lifted the Under-18 Asia Cup for the third time, thrashing host Japan 4-1 in the final in the Kakamigahara yesterday. In SAF Women's Championship 2026 final, India defeated the defending champions Bangladesh 3-1 to win the title for a record sixth time, played in Margao, Goa yesterday. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम खेती की बातें में आज जानेंगे मुलेठी की खेती और इसके लाभकारी गुणों पर कुछ विशेष जानकारियां।

सभी कृषक भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और जोहार। आज खेती की बातें कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं अनिमेश कुमार बक्सी। आज हम बातें करेंगे एक ऐसी फसल की जो दवा भी है और नकदी भी, यानी मुलेठी के बारे में बातें होंगी। आयुर्वेद में मुलेठी को यष्टि मधु भी बोलते हैं। गले की खराश खांसी में हम सब ने इसका स्वाद लिया है, पर क्या आप जानते हैं कि इसकी खेती से एक

0: में 2 से 3 लाख तक की कमाई हो सकती है। चलिए जानते हैं कि मुलेठी की खेती क्या है और इसके चमत्कारी गुण क्या-क्या होते हैं। किसान भाई बहनों, मुलेठी एक बहुवर्षीय पौधा है और इसकी जड़ जो है वो बड़ी काम की होती है। बाजार में सूखी जड़ 300 से 500 रुपए किलो बिकती है। दवा कंपनियां इसे हाथों हाथ लेती हैं और ये हमेशा डिमांड में रहती है। और खास बात इसके बारे में आपको बता दूं कि ये कम पानी वाली फसल है। झारखंड के पथरीली, कम उपजाऊ टांड जमीन में भी ये हो जाती है। जहां धान नहीं होता, वहां मुलेठी सोना उगल देती है। खेती कैसे करें? तो 3 आसान उपाय हैं, उसको आप ध्यान में रखें। पहला है जमीन, बलुआ दोमट मिट्टी इसके लिए होनी चाहिए। पानी भरने वाली जमीन में जड़ सड़ जाएगी और इसका जो पीएच मान है 6 से 8 होना चाहिए। दूसरा है बुआई, फरवरी से मार्च या फिर जून से अगस्त के बीच इसे हम बो सकते हैं। बीज से या जड़ के टुकड़े भी लगा सकते हैं। जड़ के 10 से 15 सेंटीमीटर के टुकड़े 45x45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। 1 एकड़ में 8 से 10 क्विंटल जड़ का टुकड़ा बीज के रूप में लगता है। तीसरा है खाद पानी, गोबर की खाद 10 टन प्रति एकड़ बेस में डालना चाहिए। रासायनिक खाद कम लगती है, पानी हफ्ते में एक बार, वो भी गर्मी में, बरसात में पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। चौथा है तुड़ाई, धैर्य रखे किसान भाई बहनों, मुलेठी 2.5 से 3 साल में तैयार हो जाती है। जब पत्ते पीले पड़कर गिरने लगते हैं तब जड़ को खोदना चाहिए और 1 एकड़ से 20 से 25 क्विंटल सूखी जड़ जो है वो निकल जाती है। मुलेठी के लाभकारी गुण क्या है, अब इस पर बातें कर लेते हैं। कहते हैं कि धरती की मिठास और तन का रखवाला है मुलेठी। आयुर्वेद में मुलेठी को मधुर और रसायन कहा गया है। इसके गुण है कि खांसी, गले की खराश, दमा में ये रामबाण काम करता है। शहद के साथ इसको लेना चाहिए तो ये तुरंत आराम देता है। पेट के लिए एसिडिटी, अल्सर, कब्ज में ये फायदेमंद रहता है। पेट की गर्मी को शांत करता है। इम्यूनिटी बूस्टर भी है, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और आपको बता दूं कि कोरोना के बाद जो है उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। चौथा है त्वचा और बाल, इसके पेस्ट बनाने से और इसको चेहरे पे लगाने से दाग धब्बे भी हल्के पड़ जाते हैं और बालों को काला और मजबूत भी बनाता है। हाई बीपी वाले मरीज जो हैं इसको ना खाएं और दिन में 3 से 5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। किसान भाई बहनों, आपको बता दूं कि मुलेठी की जो खेती है वो एक बार मेहनत करने से 3 साल तक कमाई देती है। बीच में मूंग, उड़द जैसी कम अवधि वाली फसल भी आप ले सकते हैं। बाजार की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि औषधि मंडी और दवा कंपनियां इसे हाथों हाथ ले लेती हैं, या फिर नजदीकी कोई कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहां पर जाकर आप तकनीकी जानकारी प्राप्त कर इसे बेच सकते हैं। याद रखें मित्रों, मुलेठी बोइएगा तो मीठी कमाई होगी। मुलेठी की खेती और इसके लाभकारी गुण, इसी विषय पर बातें हो रही थी कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत। आप सभी किसान भाई बहनों को पुनः एक बार जोहार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। रखिए अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार, जोहार।
1: दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:15 हो रहे हैं, प्रस्तुत है चिंतन। श्रोताओं, आज की दुनिया तेज है, हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, पर सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी चीजें होती हैं समय और धैर्य, और समय और धैर्य रखने से ही हमें सब कुछ मिलता है। बीज जब बोया जाता है तो वो तुरंत फल नहीं देता, उसे समय चाहिए, देखभाल चाहिए और धैर्य चाहिए। ठीक वैसे ही हमारे सपने भी हैं, हर दिन प्रयास करते रहिए, लेकिन अधीर मत बनिए, धैर्य रखिए अपने आप पर, अपने रास्ते पर और ईश्वर पर। कभी कभी जीवन थोड़ी देर लेता है, पर जब देता है तो सोच से ज्यादा देता है। धैर्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे संजो कर रखिए।

ये था आज का चिंतन। FM के 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र, और श्रोताओं आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। प्रस्तुत करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आप सभी का स्वागत है। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी मातृभूमि को समर्पित इस देशगान के साथ।

संवेद सुरों में अभी आपने सुना ये देशगान FM के 102.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और श्रोताओं आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

कार्यक्रम में अब आइए आगे सुनते हैं भजन। ये पहला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं राम भजन करमन, आवाज है लता मंगेशकर और साथियों की।

वंदना कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हमने सुने भजन लता मंगेशकर, हरिओम शरण, भीमसेन जोशी, उषा मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस।

पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना गऊएं मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है।

रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय

0: परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। और अब आइए श्रोताओं आपको बता दें आज यानी 7 जून के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियां।

श्रोताओं, आज ही के दिन 1893 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था और आज ही के दिन सन 1989 में भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया था। भारत के भाला फेंक पैरा एथलीट रहे सुमित अंतल का जन्म आज ही के दिन सन 1998 में हुआ था। इन्होंने ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था। 30 अगस्त 2021 को इन्होंने पुरुषों के एफ वर्ग के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता था। सुमित ने 68.55 मीटर दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया है। आज ही के दिन सन 1974 में भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का भी जन्म हुआ था, जिन्होंने टेनिस में लिएंडर पेस के साथ युगल मुकाबलों में शानदार सफलता अर्जित की है। इनका पूरा नाम महेश श्रीनिवास भूपति है। भूपति को 1996 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और 26 मार्च 2001 को लिएंडर पेस के साथ भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। आज ही के दिन सन 1914 में ख्वाजा अहमद अब्बास, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक रहे, इनका जन्म हुआ था। ये कुछ गिने चुने लेखकों में से थे श्रोताओं, जिन्होंने मोहब्बत, शांति और मानवता का पैगाम दिया। एक पत्रकार के रूप में इन्होंने अलीगढ़ ओपिनियन शुरू किया। बॉम्बे क्रॉनिकल में ये लंबे समय तक बतौर संवाददाता और फिल्म समीक्षक रहे। इनका स्तंभ द लास्ट पेज सबसे लंबा चलने वाला स्तंभों में गिना जाता है। 1941 से 1986 तक ये चला था। अब्बास इप्टा के संस्थापक सदस्य भी रहे। और आज ही के दिन 1975 में भारतीय टेलीविजन और फिल्म निर्माता निर्देशक एकता कपूर का जन्मदिन भी है। वे बालाजी टेलीफिल्म्स की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और क्रिएटिव हेड हैं। सास बहू सीरियल्स की अपार सफलता के लिए उन्हें टेलीविजन क्वीन भी कहा जाता है और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें सन 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

श्रोताओं, आज के दिन ही सन 2011 में भारत के नृत्य गुरु रहे नटराज रामकृष्णन का निधन हो गया था। वे आंध्र प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे, एक विद्वान और संगीतज्ञ भी थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश और दुनिया भर में शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया। इन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी जिनमें से कई को अत्यधिक सम्मानित किया गया। नृत्य की कला में नटराज रामकृष्णन के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। और आज ही के दिन सन 2002 में बी.डी. जत्ती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, इनका भी निधन आज ही के दिन सन 2002 में हुआ था। ये भारतवर्ष के निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं थे, इसलिए इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही संबोधित किया जाता है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाने की व्यवस्था है यदि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बी.डी. जत्ती देश के उपराष्ट्रपति पद पर थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 11 फरवरी सन 1977 से 25 जुलाई सन 1977 तक रहा। इस दौरान इन्होंने अपना दायित्व संवैधानिक गरिमा के साथ पूर्ण किया।

तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज यानी 7 जून के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियां। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।

सुगम संगीत का ये गीत श्रोताओं अभी आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में। शायर हैं राजेश रेड्डी और संगीतबद्ध क्या है जगजीत सिंह ने।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में ये गीत श्रोताओं भी आप सुन रहे थे, और इसी के साथ सुगम संगीत का आज का ये अंक अब संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत करते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं अनिल कुमार सिंह और साथी

0: लोकगीतों के कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत कलाकार थे अनिल कुमार सिंह, और साथ ही इसी के साथ आज का ये अंक अब संपन्न होता है।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 7:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। कार्यक्रम सुरांजलि में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में श्रोता हमने शामिल किए हैं नजरुल गीति, कलाकार हैं अनिंदिता गुप्ता।

बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि श्रोताओं भी आप सुन रहे थे और आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किए थे नजरुल गीती। कलाकार थे अनिंदिता गुप्ता। इसी के साथ आज का ये अंक सुरांजलि का अब संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में चर्चा का विषय है मानसिक तनाव की समस्या। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दीपक कुमार गिरी और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, भागती दौड़ती इस जिंदगी के दौर में हर कोई ज्यादा पाने की चाह कर रहा है। नतीजा यह होता है कि हम सब मानसिक तनाव से गुजरने लगते हैं। ये मानसिक तनाव है क्या और इसका क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है? स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में हम जानेंगे इसी विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपक कुमार गिरी। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को सबसे पहले आप ये बताइए कि मानसिक तनाव है क्या?
1: तनाव, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में स्ट्रेस भी कहते हैं, ये बदलाव के प्रतीक होने वाली कोई भी भावनात्मक या शारीरिक प्रतिक्रिया है।
0: जी।
1: हर किसी को तनाव हो सकता है। इसके अब दो रूप हैं, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक।
0: अच्छा।
1: अगर तनाव सकारात्मक हो, जिसे हम लोग यूस्ट्रेस भी कहते हैं, तो यह आपको ऊर्जा देने वाला हो सकता है। लेकिन अगर यह अस्वास्थ्यकर या फिर डिस्ट्रेस या बोलचाल की भाषा में स्ट्रेस या तनाव अगर वो हो, तो इससे तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हो सकता है कि कम समय के अंतराल तक रहने वाला कोई भी तनाव आपको उतना प्रभावित ना करे।
0: अच्छा।
1: लेकिन अगर लंबे समय तक यह तनाव बना रहता है, तो यह आप पर कई प्रकार के प्रभाव डाल सकता है और कुछ गंभीर रोगों को उभार सकता है या फिर और तेज कर सकता है, जैसे कि हृदय रोग, हृदयाघात, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज या फिर पेप्टिक अल्सर, दमा, ये सब चीजें तनाव से बढ़ जाती। कैसे पहचाने कि आप ये डिस्ट्रेस या स्ट्रेस से गुजर रहे हैं? इसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे घबराहट, उदासी या चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा महसूस करना, दिल की धड़कन बढ़ जाना या पाल्पिटेशन, धड़कन बढ़ जाता या तेज हो जाता हो, सांस लेने में परेशानी हो रही हो, पसीना आ रहा हो, गर्दन में दर्द, पीठ, जबड़े या चेहरे मांसपेशियों का दर्द या ऐठन होता हो, लगातार सिर दर्द बना रहता है, जिसे हम लोग टेंशन हेडेक भी कहते हैं।
0: अच्छा।
1: हरदम थकान महसूस करना या नींद ना आने की समस्या या अनिद्रा। इसके अलावा पेट से संबंधित भी कई समस्याएं इस तनाव से जुड़ा हुआ रहता है।
0: डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में भी तनाव नजर आता है, या फिर यूं कहें कि क्या बच्चे भी तनाव से ग्रसित हो सकते हैं?
1: हाँ, पहले ये समझा जाता था कि बच्चे तनाव से अछूते हैं या उनमें तनाव नहीं होता है।
0: जी।
1: लेकिन अब जो हम लोग अब देख रहे हैं, तो अब ये बच्चों में भी ये समस्या हमें काफी हद तक ये मिल रही है।
0: कैसे लोग इससे बचे?
1: पहले हम लोग कहते थे कि तनाव से बचिए, तनाव मत लीजिए।
0: जी।
1: लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है, तनाव से आप बच नहीं सकते हैं, तो इससे ये अब बच तो नहीं सकते, इसको अच्छे से आप डील कर सकते हैं, अच्छे इसको अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। तो उस तनाव को कम करने के कुछ उपाय होते हैं, जैसे कुछ ऐसा करें जो आपको तनाव मुक्त करे, जैसे धीरे धीरे सांस लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योग, लगातार योग, वो सब प्रैक्टिस करें, हल्का संगीत या अच्छी पुस्तक, कोई शौक अपनाए, वो शौक बागवानी हो सकती है या फिर आप कुछ पेट्स जैसे जानवर या मछली जैसे लोग अपने यहाँ रखें,
0: अपने आप को व्यस्त रखें,
1: व्यस्त रखें। ये मान के चलिए कि जो चीजें आप बदल नहीं सकते हैं, तो उन्हें स्वीकार करना आपको सीखना होगा। आप बदल भी नहीं पा रहे हैं, उस चीज के बारे में सोचे जा रहे हैं जो आपके बस में ही नहीं है, तो ये आपके तनाव को बढ़ा रहा है। सकारात्मक सोच, अपनी सीमा तय करें, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आप कर सकते हैं। कम से कम 8 घंटे नींद लें, अच्छा भोजन, स्वस्थ भोजन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, परिवार और मित्रों के साथ बात करें, खुलकर बात करें और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें। और सबसे बड़ी बात है, तनाव से बचने के लिए नशीले पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल ना करें।
0: तो श्रोताओं, आपने सुना कि मानसिक तनाव से तो हम सब गुजर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, अगर उस पे आप अमल करें, तो उम्मीद है आप मानसिक तनाव से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

मानसिक तनाव, और इसके बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे थे डॉक्टर दीपक कुमार गिरी, और इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी,

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार प्रभात। 8:15 का वक्त होगा मॉर्निंग न्यूज का और 8:30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर फिल्मी गीतों का सफर हम शुरू करेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। सुबह 9:10 पर सुनिएगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव सुनना ना भूलें सुबह 9:30 से। और विश्व दर्पण समाचार का प्रसारण समय होगा सुबह 10:10 से। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 10:20 से। दिन में 11:05 पर होगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर और 12:05 पर सुनेगा कार्यक्रम भावगीत। 12:30 का वक्त होगा कार्यक्रम अंगना का और दोपहर 1 सुनेगा हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से, प्रसारण समय होगा दोपहर 1:10 से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने

0: और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Full potential of our time.
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
5: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोज डेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोज डेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोन

0: स्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। जेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संस्विदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
3: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मानसून

0: अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट, नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings, and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
3: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms and instructed that the presence of Patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
4: For Akashvani News, Shuman Bhattacharjee, Agartala.
2: The National Testing Agency, or NTA, has refuted the claim circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access, or sale of the

0: राज्यसभा की दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगा।
1: हेमंत जी से मुलाकात हुई, विस्तार से चर्चा हुई और गठबंधन की दोनों सीटें हम जीतेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और खुल के बात हुई है और दोनों से हम जीतेंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने दो दिवसीय झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज बोकारो स्टील सिटी में पार्टी कार्यकर्ता प्रीतम सिन्हा के आवास पर जाएंगे, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नेताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद वे ओरमांझी के कुचू स्थित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर जाएंगे। तत्पश्चात वे रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय लौटेंगे, जहां जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों तथा प्रदेश मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी सेल के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही सेंट्रल रेडियोलॉजी हब CRH की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य के सरकारी अस्पताल विशेषज्ञ रेडियोलॉजी सेवाओं से जुड़ेंगे। इस व्यवस्था के तहत एक्सरे, सिटी स्कैन और MRI जैसी जांचों की रिपोर्ट विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट केंद्रकृत प्रणाली के माध्यम से तैयार करेंगे, जिससे रिपोर्ट की गुणवत्ता और उपचार की गति में सुधार होगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि यह छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है, उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आहार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने रिम्स 2 विवाद मामले में जन आंदोलन का ऐलान किया है। रांची में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जमीन बचाने के लिए 10 दिन के भीतर लाखों आदिवासी सड़क पर उतरेंगे।
2: जमीन संघर्ष समिति जो पिछले बार आह्वान किया था, इस बार भी आह्वान कर रहा कि यहाँ लाखों की संख्या में आएंगे और ये आदिवासी विरोधी मूलवासी विरोधी सरकार को एक बड़ा जन आंदोलन को सामना करना पड़ेगा। न्यायालय का दरवाजा भी जाएगा यहाँ का दर्द कि हम क्या इस रांची अंचल में आदिवासी पैदा होना क्या गुनाह है।
0: इधर भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व विधायक सीता सुरेन ने नगड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण का विरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों और ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि वह किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था।

0: आदित्यपुर का रहने वाला है। वो कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही हमारी टीम द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसे पकड़ लिया गया और उसके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा गोली भी उसके पास से प्राप्त हुई।
1: झारखंड के ऊपर से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरने के कारण राज्य के कई जिलों में अगले चार दिनों तक कहीं कहीं आकाश में बादल छाए रहने, तेज हवा चलने, मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। यह मैच कल गोवा के मडगांव में खेला जाएगा। 7 साल बाद भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम की। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्यसभा चुनाव की बड़ी हलचल की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर के शब्द हैं, राज्यसभा चुनाव झारखंड में रोमांच बढ़ा, हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए राजनीतिक मैदान तैयार। हिंदुस्तान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के झारखंड दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लिखा है, संगठन की मजबूती के दिए मंत्र, मिशन 2029 पर मंथन। दैनिक जागरण लिखता है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सिविल जज भर्ती परीक्षा पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य में बढ़ी सियासी सरगर्मी। झामुमो से बैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा समेत अब तक कुल 6 उम्मीदवारों ने खरीदा नामांकन पर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड दौरे का दूसरा दिन, कई संगठनात्मक कार्यक्रम में लेंगे भाग। बोकारो में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से करेंगे संवाद। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा, झारखंड में जल्द स्थापित होगा सेंट्रल रेडियोलॉजी हब। सरकारी अस्पतालों को मिलेंगी विशेषज्ञ सेवाएं। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के मानक पैकिंग साइज लागू किए, पारदर्शिता और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना उद्देश्य। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज से अगले 4 दिनों के लिए आंधी के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम फिल्म संगीत में। फिल्मी गीतों के आज के सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी दीपिका। नमस्कार श्रोताओं, आज का ये दिन यानी 7 जून दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अब श्रोताओं, भोजन, खाना, ये सब हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये हर तरह से हम जानते हैं, हम वाकिफ हैं इस चीज़ से। लेकिन फिर भी हर वर्ष 7 जून को, यानी आज के इस दिन को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के तौर पे मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दूषित भोजन से होने वाले खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है और खाद्य सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना है। श्रोताओं, आज हम एक आधुनिक युग में रह रहे हैं, लेकिन खाना शुरू से हमारी ज़रूरत रहा है। लेकिन उस खाने को हमें कैसे लेना है, कितना लेना है और किस हद तक हमें उसे सुरक्षित वे में रखना है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। श्रोताओं, इस वर्ष 2026 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की आधिकारिक थीम है बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन, यानी फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर। ये थीम जो है वो इस बात पे जोर देती है कि असुरक्षित भोजन के कारण स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर जो वैश्विक बोझ पड़ता है, अब विज्ञान, सटीक डेटा और व्यवहारिक उपायों के जरिए उसके पुख्ता समाधान

खोजने का समय आ गया है। श्रोताओं, भारत जैसे देश में जहां पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वहां खाद्य पदार्थों को लेकर हमारी सतर्कता भी सबसे ज्यादा होनी है। जब हम भारत के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध हमारी कृषि व्यवस्था से जुड़ जाता है। श्रोताओं, भारत को तो खाद्य सुरक्षा और कृषि प्रधान देश कहा ही गया है, लेकिन भारत ने खाद्य सुरक्षा के मामले में तो आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर भी अभी लंबी दूरी तय करना बाकी है। श्रोताओं, भारतीय कृषि इस समय उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ भोजन को केमिकल मुक्त और सुरक्षित बनाने की दोहरी चुनौती से जूझ रही है, और इन सब में हम सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं हमारे किसान भाई और बहनों का, क्योंकि यही वो लोग हैं श्रोताओं जो दिन रात 24 घंटे, चाहे गर्मी की वो चिलचिलाती धूप हो या बारिश हो या मौसम ठंड का हो, ये अपने काम से पीछे नहीं हटते। हमें समय पर फल फूल सब्जी आयुर्वेदिक दवाएं या कुछ भी, जो कुछ भी हमें जरूरत है, हमारे किसान भाई बहन हमें समय से मुहैया करा रहे हैं। इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही श्रोताओं आज सही तौर पे खाना सब्जी फल हमें मिल रहे हैं, केमिकल मुक्त और पौष्टिक से भरा हुआ।

फिल्म दो बीघा ज़मीन का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना मन्ना डे, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में। बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और धुन बनाई है सलिल चौधरी ने। श्रोताओं, भारतीय कृषि में फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों और खादों का भारी इस्तेमाल होने लगा है। इसका अवशेष अनाज, फलों और सब्जियों के जरिए हमारे शरीर में पहुँचता है। 2026 की थीम के अनुरूप भारत अब समाधान की ओर बढ़ रहा है, जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। श्रोताओं, भारत में खेत से थाली तक पहुंचने के बीच रखरखाव की कमियों के कारण भारी मात्रा में अनाज और फल सब्जियां खराब या दूषित हो रही हैं। उचित लॉजिस्टिक न होने से फंगस और बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके समाधान के लिए सरकार कृषि अवसंरचना कोष के जरिए ग्रामीण स्तर पर कोल्ड चेन और आधुनिक गोदामों का नेटवर्क तैयार कर रही है। भारत में FSSAI और सुरक्षा मानक प्राधिकरण खेतों से निकलने वाले उत्पादों की गुणवत्ता की निगरानी को बढ़ा रहा है। ईट राइट इंडिया जैसे अभियान अब किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं कि वे फसल काटते समय और उनकी पैकेजिंग के दौरान स्वच्छता के मानकों का पालन करें। श्रोताओं, खाद्य सुरक्षा केवल किचन की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसान के खेत से शुरू होती है और अगर मिट्टी और पानी सुरक्षित होंगे तभी उपज भी सुरक्षित होगी। इस वर्ष की थीम हमें याद दिलाती है कि असुरक्षित भोजन के नुकसान को केवल एक समस्या मानकर नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि कृषि तकनीकों में सुधार करके इसके समाधान निकालने होंगे। भारतीय कृषि को अब केवल ज्यादा उत्पादन की बजाय सुरक्षित और पौष्टिक उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब देश का किसान सुरक्षित फसल उगाएगा तभी हर नागरिक को सुरक्षित भोजन मिल सकेगा।

0: फिल्म मदर इंडिया का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना, मोहम्मद रफी, शमसाद बेगम, मन्ना डे, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। शकील मदायूनी ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है नौशाद ने। और श्रोताओं, ये बिल्कुल सच है कि हमारी एक छोटी सी कोशिश दुनिया की बहुत बड़ी समस्या को सुलझा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करोड़ों टन बना हुआ खाना सिर्फ इसलिए फेंक दिया जाता है क्योंकि हम अपनी थाली में ज़रूरत से ज़्यादा खाना ले लेते हैं या शादियों या पार्टियों में लापरवाही बरतते हैं। भारत जैसे देश में जहां आज भी लाखों लोग हर रात भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, वहां हर दिन टन के हिसाब से खाना बर्बाद होना एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर हम सिर्फ अपने स्तर पर भोजन की बर्बादी को रोक लें, अपनी थाली में उतना ही खाना लें जितनी भूख हो और बचे हुए साफ खाने को कचरे में फेंकने के बजाय किसी ज़रूरतमंद को दे दें, तो हम हजारों लाखों मासूमों का पेट भर सकते हैं। श्रोताओं, अन्न की बर्बादी किसी भूखे को खाने खिलाने से तो बहुत ही पीछे है, इसलिए आइए मिलकर ये संकल्प लें कि हम खाना बचाएंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब सम्पन्न होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को है, समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारम्भ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण

योगदान दे रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। भारत एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ न्यू चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन से आगे खेलेगी। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। साई सुदर्शन ने 81 रन का योगदान दिया। अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम सरफी ने 2 और जियाउर रहमान ने 1 विकेट लिया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला फ्लेवियो कोबोली से होगा। रूस की मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल में एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालिन्स्का को सीधे सेट में 6-3, 6-2 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।

FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:10 होने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। 9:25 पर कार्यक्रम सुरंजना हम आपके साथ साझा करेंगे और 9:30 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 9:10 होने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: पुरस्कार की घोषणा हुई थी तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
1: मैं तो सरपंच हूँ लेकिन मेरे ग्रामों से और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी खुशी के झूम उठे और मेरे जनपद के अधिकारी जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकासखंड बगीचा जिला जसपुर को मिला उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुँच पाए उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
0: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीकी स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
1: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास हमारे गांव में और जंगल है पहाड़ है फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोकर सभा किए बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है मतलब कचरा के इकट्ठा करना है कहीं नहीं फेंकना है और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में चार बार और हम लोग पूरे गाँव जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
0: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
1: मेरा सहयोग दिए।
0: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है तो शत प्रतिशत सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौती आपके सामने थी?
1: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं और धीरे धीरे हम लोग लोकर सभा जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से अब हम लोग पंच के माध्यम से अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए लगन किए तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
0: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
1: जल संरक्षण के लिए केड़ा विभाग मेरा सहयोग किए से और पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था उस समय मैंने केड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
0: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
1: सर, बहुत सारा चुनौती है जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए और पिछले 5-10 साल टपका विधि खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से तो उसमें पानी की बचत हो रही है और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं एक सुखता गड्ढा जो बोलते हैं अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं 2.5 मीटर का 2 मीटर का 1 मीटर का उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं नहाते धोते हैं उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
0: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
1: सर, मैं पहले माइक्रोवाटर शेड में काम किया था जल ग्रहण समय में माइक्रोवाटर शेड में काम किया माइक्रोवाटर शेड कर ही मतलब है कि तो वाटर पानी को इकट्ठा करना और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है तालाब है डबरी है चाहे नलकूप है चाहे हैंडपंप है उसमें पानी वो ही पानी आता है बरसात का पानी।
0: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
1: सर पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं। हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
0: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
1: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए और जनपद से भी कुछ पैसा और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
0: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
1: सर आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए, अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
0: मतलब उसके लिए भी अपने कार्य योजना
1: तैयार कर रहे हैं।
0: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
1: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, कहा कि उसको हम लोग बनाते नहीं है, उसको हम खुद नहीं बनाते हैं तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए हैं, वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कुछ प्लास्टिक मुक्त है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
0: इस तरह की जो गतिविधियां खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं,

0: उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
1: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्वर सहायता समूह को। उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
0: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
1: और सप्ताह में हम जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
0: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
1: सर, केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
0: जी,
1: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
0: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
1: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता।
0: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
1: सर, उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
0: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
1: सर, हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है एकदम, सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं
0: जी,
1: और सारा समस्या का हल मैं इसमें उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इसमें उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर पे उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
0: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
1: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है जो लगता है सचिवालय, उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन काम है। मेरा सोमवार मंगल बुध भी मेरा 3 दिन लगातार बैठक अपने घरे में बैठता हूँ, और 3 दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, अब 3 दिन मेरा काम हो जाता है, मतलब हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है।
0: यही कारण है कि आपकी पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है
1: जी सर।
0: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने मिल रहा है, खासतौर पर जब गाँव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
1: सर, उसके लिए अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
0: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
1: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, ना आदिवासी लोग रहते हैं, ना उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से ODF मतलब पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
0: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए, आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
1: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है, हम बैठे बैठे अपने कार्य को जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं
0: जी,
1: चाहे जिसे का महिला KYC वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। अब हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
0: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
1: जिन्होंने

0: में मतलब के जागरूक नहीं थे, उसको हम मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
1: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
0: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, पर शासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी बेसी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
1: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
0: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि हैं या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा, उनको और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
1: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरडी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर, और श्रोताओं आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।

फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना, राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज़ों में इरशाद कामिल के बोल हैं और धुन बनाई है प्रीतम ने। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 9:30 हो रहे हैं, प्रस्तुत करते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव।

0: जय हिंद दीदी।
1: सभी श्रोता बच्चों का कार्यक्रम में स्वागत। और पल्लव के आज के इस अंक के साथ मैं हमेशा की तरह आपकी सीमा दीदी। बच्चों, पिछले दिनों हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और संकल्प लिया कि वनों की हम रक्षा करेंगे। वनों से हमें क्या क्या लाभ है और वनों का क्या महत्व है, इस बारे में आज के कार्यक्रम में अजय शर्मा और जानकारी देंगी। और कल विश्व महासागर दिवस है, तो खारे पानी का विशाल क्षेत्र महासागर, इस विषय पर भी आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी। और शहर जमशेदपुर की प्रतिभाशाली बच्ची का गाया गीत भी हम आपको सुनवाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। बच्चों, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी एक अद्भुत नीले गोले की तरह दिखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग 70% से अधिक महासागरों से ढका हुआ है। महासागर पृथ्वी की सतह पर फैले विशाल बेसिनों में स्थित खारे पानी के क्षेत्र हैं। हालांकि पृथ्वी पर खारे पानी का एक ही निरंतर निकाय है, फिर भी वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ता इसे 5 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में ये हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। महासागर चौड़ाई के साथ साथ गहराई में भी होते हैं। औसतन एक महासागर की गहराई 2 मील से थोड़ी अधिक होती है, लेकिन प्रशांत महासागर में गुआम से लगभग 200 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित मारियाना ट्रेंच का पानी लगभग 7 मील गहरा है। ये महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है। बच्चों, क्या आप जानते हैं महासागर पृथ्वी की जलवायु को रहने योग्य बनाए रखने में मदद करते हैं। पूरे विश्व में पानी का प्रवाह करके महासागर किसी भी स्थान को अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडा होने से बचाते हैं। महासागर पृथ्वी को गर्म रखने में भी मदद करते हैं। जिस प्रकार बाथ टब का गर्म पानी एक छोटे कप में रखी गर्म चॉकलेट की तुलना में अधिक देर तक गर्म रहता है, उसी प्रकार महासागरों में मौजूद विशाल मात्रा में गर्म पानी ऊष्मा का भंडारण करता है। फिर समुद्री धाराएं उस ऊष्मा को पृथ्वी के चारों ओर ले जाती है। महासागरों के बिना पृथ्वी एक बर्फीली चट्टान होती। बच्चों, महासागर और समुद्र शब्दों का प्रयोग अक्सर एक ही अर्थ में किया जाता है। समुद्र महासागर का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसके चारों ओर आमतौर पर भूमि होती है। अफ्रीका और यूरोप के बीच स्थित भूमध्य सागर, उत्तरी और मध्य यूरोप में बाल्टिक सागर और उत्तरी मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित कैरेबियन सागर, ये सभी समुद्र हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्री जीवों की 91% प्रजातियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इनकी संख्या 7 लाख तक हो सकती है। इनमें से अधिकांश 95% अकशेरुकी जीव हैं, जैसे जेलीफिश और झींगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ सबसे छोटे जीव महासागरों में रहते हैं। जू प्लैंकटॉन जैसे समुद्री जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। ग्रेट व्हाइट शार्क, मंटा रे और ओशन सनफिश जैसी बड़ी मछलियां भी इन जल में तैरती है। पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा जानवर नीली व्हेल नामक एक समुद्री स्तनधारी जीव है। ये 2 स्कूल बसों जितनी लंबी है। डॉल्फिन और समुद्री शेर भी समुद्र में रहने वाले स्तनधारी जीव हैं। बच्चों, महासागर वनस्पतियों से भरा पड़ा है। इनमें से अधिकांश नन्हे शैवाल हैं, जिन्हें फाइटोप्लैंकटन कहा जाता है, और इन सूक्ष्म पौधों की एक बड़ी भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये मनुष्य और अन्य स्थलीय जीवों द्वारा सांस लेने वाली लगभग आधी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। समुद्री शैवाल और केल्प जैसे बड़े शैवाल भी महासागर में उगते हैं और समुद्री जीवों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। तापमान, समुद्र की गहराई और तट से दूरी समुद्र के किसी क्षेत्र में रहने वाले पौधों और जानवरों के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। इन क्षेत्रों को पर्यावास कहा जाता है। प्रवाल भित्तियां एक प्रकार का पर्यावास हैं। जब पॉलिप्स नामक छोटे जीव मर जाते हैं तो उनके कंकाल कठोर हो जाते हैं ताकि अन्य पॉलिप्स उनके ऊपर रह सके। फिर वे पॉलिप्स भी मर जाते हैं और नए पॉलिप्स आ जाते हैं। हजारों वर्षों के बाद ये एक जटिल संरचना बन जाती है, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं, जो कई प्रकार के समुद्री जीवों को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। समुद्री घोड़े, क्लाउन फिश और समुद्री कछुए जैसे जीव प्रवाल भित्तियों पर रहते हैं। बच्चों, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमने महासागर का केवल 5% ही खोजा है। हो सकता है कि आप ही अगले व्यक्ति हों जो मछली की एक नई प्रजाति या पानी के नीचे एक गहरी खाई की खोज करें। समुद्र तल पर पाए जाने वाले कई जीव जंतुओं की अभी तक खोज नहीं हुई है और वे अभी तक मानवीय गतिविधियों से अछूते हैं। महासागरों का 80% से अधिक भाग अभी भी अनछुआ है। तो बच्चों, अभी हम खारे पानी का विशाल क्षेत्र महासागर के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे और इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं ये गीत।

0: बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत के कई शहर अब दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल होने लगे हैं? शायद 50 डिग्री भी अब दूर नहीं है। बेतहाशा प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, कंक्रीट का फैलाव, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और बढ़ता तापमान हमें सचेत कर रहा है। ये गर्मी अब हमें चेतावनी दे रही है कि हम अपने पेड़ पौधों को बचाएं, वनों का संरक्षण करें, क्योंकि हमें वनों से बहुत सारे लाभ हैं। तो आइए अजय शर्मा की ये वार्ता सुनते हैं। विषय है वनों से लाभ।
1: बच्चों, वनों का महत्व एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा करने बैठें तो सुबह से शाम हो जाएगी, पर विषय समाप्त नहीं होगा। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों को बताने की चेष्टा करूंगी। वन तो वृक्षों की जन्मभूमि है और वृक्ष प्रकृति के राजकुमार हैं। वनों को हरा सोना भी कहा जाता है, अर्थात वन बहुमूल्य होते हैं। पेड़ पौधे मनुष्यों को परोपकार करना सिखाते हैं। वृक्ष हमारे बड़े भाई की तरह होते हैं। रहीम जी की यह पंक्तियां मुझे याद आ गईं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। बच्चों, तुमने पढ़ा होगा, वृक्षों में भी हमारी तरह जान होती है। वे भी सांस लेते हैं, अपना वंश बढ़ाते हैं। वे भी बीमार होते हैं, उनमें भी मनुष्यों की तरह स्नेह, भय, हर्ष, शोक आदि भावनाएं होती हैं। वृक्ष मनुष्य को अपना सहयोगी समझते हैं, परंतु हम उनसे सौतेला व्यवहार करने लगे हैं। आदि काल में मानव जंगलों में ही रहता था, कंदमूल फल फूल खाता, शिकार करता, वृक्षों की छाल पहनता और जंगली जानवरों से बचने के लिए पेड़ों पर ही शरण लेता था। कितने ही पक्षी अपना घोंसला वृक्षों पर बनाकर जीते हैं, कितने पशु पक्षी इन्हीं वृक्षों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बच्चों, वृक्षों का प्रत्येक अंग उपयोगी होता है। हम एक एक अंग की चर्चा करेंगे। औषधि के लिए वृक्षों की जड़, छाल, टहनी, पत्ते, फूल, फल और बीज उपयोगी होते हैं। मोटे तने इमारत, फर्नीचर और अन्य उपयोगी सामान में काम आते हैं। कोमल डालियां, पत्ते, फूल, फल पशु पक्षियों और मनुष्यों के भोजन बनते हैं। बीज और गुठलियां पुनः नया वृक्ष तैयार होने के काम आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि विद्यार्थियों के लिए कागज कितना महत्वपूर्ण होता है। वह भी पेड़ के रेशों से ही बनता है। सैलून नामक चीनी व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था। मिस्र के लोग पेपिरस नामक पौधे से पेपर बनाते हैं। वैसे देवदार, चीड़ आदि के रेशों से भी कागज बनता है। इन्हें सेल्यूलोज कहा जाता है। कागज को रद्दी होने पर बार बार बनाकर प्रयोग में लाना चाहिए, इससे पेड़ों की रक्षा होगी। इतना ही नहीं, वन मनुष्य के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए वर्षा कराते हैं, इससे धरती हरी भरी हो जाती है, जीवों को अन्न जल प्राप्त होता है। कल्पना कीजिए, अगर वर्षा ना हो तो नदी, तालाब, कुएं, जल स्रोत सूख जाएंगे और एक दिन सागर भी अपना अस्तित्व खो देगा। धरती वीरान, बंजर, धूल का ढेर बनकर रह जाएगी। स्वार्थ के कारण मनुष्य पर्वतों और जल स्रोतों के आसपास के वनों को काट देता है, जिसके कारण बाढ़ का भीषण प्रकोप झेलना पड़ता है। दूसरी तरफ सूखा पड़ने और समय पर वर्षा ना होने का कष्ट भी झेलना पड़ता है। माना लकड़ी हमारे लिए उपयोगी है, परंतु वृक्ष काटने के साथ साथ नए पौधे भी लगाने चाहिए। आज ज्ञानी अज्ञानी सभी इस बात को स्वीकार करते हैं और वृक्षारोपण का महोत्सव मनाते हैं। वन महोत्सव का कारण जानने लगे हैं, लेकिन आज भी जितनी तेजी से वनों को काटा जा रहा है, शहर बनाए जा रहे हैं, कारखाने खोले जा रहे हैं, उतनी तेजी से वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है। वन लगाकर हम कई प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं। इस बात पर हमारी सरकार का भी ध्यान गया है। जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाकर विदेशी धन प्राप्त हो सकता है। जंगली पशु पक्षियों के बसेरे से वनों का सौंदर्य बढ़ेगा और पर्यटकों के आगमन से आय होगी। सुंदर पक्षियों के पंख, मृत पक्षियों, पशुओं की खाल एवं बाल से आकर्षक वस्तुओं का निर्माण हो सकेगा। लकड़ियों के व्यापार आदि से लोगों को रोजगार मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, पशुओं के लिए चारे की कमी नहीं रहेगी, वायु का प्रदूषण दूर होगा, नैसर्गिक सौंदर्य बढ़ेगा, भूमि के नीचे जल की कमी नहीं होगी, प्रकृति का संतुलन बना रहेगा, जंगली जानवर भोजन की खोज में शहर की तरफ नहीं भागेंगे। हमारी सरकार ने कुछ वनों को पशु पक्षियों के लिए सुरक्षित घोषित किया है, जैसे भरतपुर का घाना पक्षी विहार, कोडेई कनाल नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, गुजरात का गिरिवन आदि हैं। वैसे हमारे देश में वनों की कमी नहीं, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा वन, झारखंड का सारंडा वन, बस्तर से आरंभ होने वाला छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक फैला दंडकारण्य प्रमुख हैं। अगर हमें अपने वनों में रहने वाली जनजातियों को लुप्त होने से बचाना है तो वनों को सुरक्षित रखना होगा। बच्चों, वृक्ष के बारे कुछ वैज्ञानिक बातें भी जान लो। एक हरा भरा बड़ा वृक्ष एक मौसम में 10 लोगों को साल भर सांस लेने की ऑक्सीजन देता है। एक वृक्ष अपने जीवन में एक मनुष्य की 3 पीढ़ियों को ऑक्सीजन दे सकता है। एक पेड़ एक साल में 48 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है। दुनिया में 23,000 प्रकार के वृक्ष होते हैं। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों का आदर और कुछ वृक्षों की पूजा करना सिखाया है, क्योंकि वे वृक्षों के महत्व को अच्छी तरह जानते थे। पीपल का वृक्ष पूजनीय है, कहते हैं इसमें वासुदेव जी का वास है। सभी वृक्ष दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में लेते हैं, परंतु पीपल रात दिन ऑक्सीजन देता है। ये है ना एक अच्छी जानकारी। बोध गया के उस बौद्ध वृक्ष का दर्शन करने आज भी पर्यटक आते हैं, जिसके नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक वृक्ष की उम्र का अंदाजा लगाना है तो जान लो बच्चों, आज से 2578 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और वह बौद्ध वृक्ष उससे भी पहले से था। बरगद, जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं, इसमें डालियों से सोर निकलकर फिर जड़ बन जाता है। इसका एक सुंदर उदाहरण कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में है, जिसकी पहली जड़ बताना कठिन है, इतना विशाल रूप धारण कर चुका है वह वृक्ष। वृंदावन में जिस वृक्ष पर श्री कृष्ण गोपियों से वस्त्र चुराकर बैठते थे, वह आज भी पूजा जाता है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में वह बेर का पेड़ जिस पर कौवा स्नान कर हंस बनकर बैठ गया था, वह आज भी पूजा जाता है। प्राणिक हीलिंग जैसी चिकित्सा में हमारे पूर्वजों ने बताया है कि इंसान जब बहुत थक जाए या निराश हो जाए तो वह बड़े मजबूत वृक्ष को अपनी बाहों में घेर कर चिपट जाए तो कुछ पलों में ही बहुत सुकून पाता है, नया जीवन सा महसूस होता है। ये सच है कि वृक्षों से भरा वन मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वह हमारा परिवार है। वन धरती को बचाए रखता है, धरती मनुष्य को बचाती है, तो मनुष्य को वन बचाए रखना चाहिए, तभी यह चक्र चलता रहेगा, प्रकृति सुंदर बनी रहेगी।
0: बच्चों, ये थी अजय शर्मा जो हमें वनों से लाभ इस विषय पर जानकारी दे रही थी। और अब आइए सुनते हैं ये गीत।

0: साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव, श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने को है, अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में बारी बारी से। 10:10 पर होगा विश्व दर्पण समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 10:20 पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से हम लेकर आएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुबह के 10 बजने को हैं, समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने वर्ष 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच चुके हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन गतिविधियों के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में वर्ष 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुँचने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माने जाने वाले

0: दो ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमेरिकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालेंस्का को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से मात दी। इस उपलब्धि के साथ ही एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 1992 में 18 साल की मोनिका सेलेस ने यह खिताब अपने नाम किया था। उधर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेवियो कोबेली आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटीय हिस्सों केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में आज लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. The Home Minister also directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with a ruthless approach. The National Testing Agency has refuted claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, the NTA said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. A report.
2: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to fall prey to the fraudulent solicitations. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: The government today said that Indian households continue to receive cooking gas at among the lowest prices globally despite a sharp rise in international LPG prices. In a statement, the Petroleum and Natural Gas Ministry said that the Indian cylinder is cheaper than in any neighboring country and far below the price in advanced economies such as the United States, Australia and Canada. It noted that a beneficiary of the Pradhan Mantri Ujwala Yojana pays ₹642 for a 14.2 kg LPG cylinder after receiving a direct benefit transfer of ₹300 on the first 4 refills annually, while the retail price for a general consumer in Delhi stands at ₹942. Notably, the price of domestic LPG cooking gas has been increased by ₹29 per 14.2 kg cylinder. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar virtually handed over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal under the reconstruction program post 2015 earthquake after meeting with his visiting counterpart Shishir Khanal in New Delhi. The two leaders jointly launched the linkage between UPI India and the National Payments Interface of Nepal for facilitating cross-border personal remittances. Both leaders also witnessed the exchange of a memorandum of understanding between Digital India Bhashini and Kathmandu University for co-creating the national digital infrastructure for a voice-first language translation platform for Nepal. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari has said that BJP government will undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state such as Dakshineshwar and Kali Ghat temples. He said work has already commenced to elevate the Ganga Sagar Mela to international standards, while facilities at prominent religious landmarks like Dakshineshwar and Kali Ghat will be significantly upgraded. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall at isolated places over coastal Karnataka, Kerala and Mahi today. The weather agency also predicted thunderstorms and lightning today in places over Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Telangana, West Bengal and Sikkim. Heatwave conditions are expected today in parts of coastal Andhra Pradesh and Odisha. Warm night conditions are likely to prevail over Odisha tonight. In men's cricket, India were 398 for 3 in their first innings on day 2 of one-off test against Afghanistan in New Chandigarh when reports last came in. Centuries from KL Rahul and Captain Shubman Gill have put the men in blue in a strong position. Sai Sudarshan also contributed 81 before missing out on a maiden test century. In SAFF Women's Championship 2026 final, India defeated the defending champions Bangladesh 3-1 to win the title for a record 6th time. The match was played in Madgaon, Goa yesterday. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के 2 ड्रोन नष्ट किए रूस के अधिकारियों ने सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन के ड्रोन हमले को अप्रत्याशित बताया और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6th बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया अब समाचार विस्तार से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेनदेन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं
4: Collaborate closely to maintain security.
5: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है
4: Full potential of our time.
3: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल 2 देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं अमेरिका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माने जाने वाले ईरान के 2 ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया है अमेरिकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है एक रिपोर्ट
0: अमेरिका की सैन्य कमान ने बताया है कि अमेरिकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान की ड्रोन गतिविधि की खबरों के बाद अमेरिकी बलों के केशम द्वीप और गोरुख में ईरानी रडार और निगरानी स्थलों को निशाना बनाने के कुछ घंटों बाद हुए इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच शांति के लिए प्रयास करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी कल ईरान पहुंचे हाल के हफ्तों में ये उनकी ईरान की तीसरी यात्रा है विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल
3: रूस के अधिकारियों ने यूक्रेन में सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर हमले को अप्रत्याशित बताया है रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए एक रिपोर्ट
6: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया

0: जेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुँचने का अनुमान है।
2: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा का भी कार्यक्रम है। इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इसराइल की सेना के प्रवक्ता ने बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने नागरिकों के मारे जाने के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। अमेरिका में कल रात ओहियो में टोलेडो में सामुदायिक गली महोत्सव के पास कई लोगों को गोली मार दी गई। संदिग्धों की तलाश जारी है। स्थानीय पुलिस को ओल्ड वेस्टर्न फेस्टिवल के पास गोलीबारी की सूचना मिली। सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। 7 साल बाद भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम की। एक रिपोर्ट।
3: खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतविदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने 3री गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेवियो काबुली आमने सामने होंगे। रूस की मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। कल फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा पोलैंड की माया चवस को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराया। इस उपलब्धि के साथ ही एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 1992 में 18 साल की मोनिका सेलिस ने यह खिताब अपने नाम किया था। उलान बतार ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने भार वर्ग में कल स्वर्ण पदक जीते। इस प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 6 और पदक अपने नाम किए। 21 वर्षीय सागर जगलान ने फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में तामिर मुखबंद को 15-4 से हराया। वहीं 22 वर्षीय जयदीप ने मुखबंद को पराजित किया और तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर उसके जीत हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। महिला कुश्ती में अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में 18 साल की काजल ने फाइनल में नाइजीरिया की अफ्रीकी चैंपियन दामला उजा को 8-0 से हराकर 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल

एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुकी पहलवान प्रिया मलिक ने इसी वर्ग में मंगोलिया की तुफशिन जारगल ताराव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। जापान के काकामिगारा में भारत के अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अमेरिका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के 2 ड्रोन नष्ट किए। रूस के अधिकारियों ने सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के ड्रोन हमले को अप्रत्याशित बताया। फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज़्वेरेव का मुकाबला फ्लोवियो कोबोली से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विश्व दर्पण समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:20 हो रहे हैं। फिल्म संगीत हम लेकर हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
5: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
4: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
5: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

फिल्म धुरंधर का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना खान साहब और शाश्वत सचदेव की आवाज़ों में। वो लिखे हैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने और धुन बनाई है शाश्वत सचदेव और नुसरत फ़तेह अली खान। फिल्म धुरंधर

0: फिल्म धड़क टू का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना जुबीन नौटियाल, तनिष बागची, सुवर्णा तिवारी और उजल दलाल की आवाज़ों में। बोल लिखे हैं उजल दलाल ने और धुन बनाई है तनिष्क बागची ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

फिल्म लूडो का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना रिजीत सिंह की आवाज में, बोल लिखे हैं संदीप श्रीवास्तव ने और धुन बनाई है प्रीतम ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रही हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अरिजीत सिंह और नीति मोहन की युगल स्वरों में श्रोताओं आपने सुना फिल्म कलंक का ये ट्रैक। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल को संगीत बद किया है प्रीतम ने। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म दिल धड़कने दो का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना, याशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू, फरहान अख्तर, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। जावेद अख्तर के इस लिखे गीत को संगीतबद्ध किया शंकर एहसान और लॉय की जोड़ी ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर सम्पन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त दीपिका को अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। 11:05 पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। दिन में 12:05 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम शीर्षक गीत का और 12:30 पर

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब हम हैं अपने दिवाकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। दिन के 11 बजने को है, अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हिंदी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर

0: बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालिंस्का को सीधे सेट्स में 6-3, 6-2 से हराया। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 102 ओवर में 5 विकेट पर 456 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 11:05 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का, लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार। जमशेदपुर के आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में एक अच्छा जीवन, प्रेम, शांति, आनंद और संतोष से परिपूर्ण जीवन जीने की लालसा रखते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा कोई जीवन होता है? क्या ऐसा जीवन पाकर कठिनाइयां, निराशाएं, चुनौतियां जीवन में समाप्त हो जाती हैं? नहीं। जब हम भरपूरता के भाव के साथ जीने की कला सीख लेते हैं, तब हमें वो परिपूर्णता का एहसास होता है। जीवन परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलता श्रोताओं, जीवन तब बदलता है जब हम स्वयं बदलते समय के साथ नई व्यवहार, नया जीवन अपनाने के लिए तैयार होते हैं। और इस परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब हम कृतज्ञता से जो हमारे पास है उसे उसमें खुश होकर और उसके लिए, उन कृपाओं के लिए जब आभार प्रकट करते हैं। ये वो सद्गुण है जो हमें अभावों के बजाय मिलने वाली कृपाओं और भरपूरता से के साथ जीवन को नए नजरिए से देखने की दृष्टि प्रदान करता है। तो ऐसे में अगर आपके पास आज जो भी कुछ है उसमें खुश होने की कोशिश करें, जो ना है उसके लिए दुखी होने से जो आपके पास मौजूद है उसका अहमियत भी कहीं ना कहीं जिंदगी में कम होने लगता है श्रोताओं।

श्रोताओं, मोहित चौहान की आवाज में आप सुन रहे थे तमाशा फिल्म का ये गीत। आज है 7 जून श्रोताओं, कैलेंडर का वो पन्ना जो हमें याद दिलाता है कि जिस थाली से हमारा पेट भरता है वो थाली हमारे लिए कितनी सुरक्षित है। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। हम अक्सर कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन आज के दौर में ये कहना भी जरूरी है कि जैसा सुरक्षित अन्न वैसा तंदुरुस्त जीवन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 में ये फैसला लिया और 7 जून 2019 को पहली बार पूरी दुनिया ने मिलकर पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया। इसे मनाने का जिम्मा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO को सौंपा गया। हर साल कुछ न कुछ उद्देश्य इस दिन के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इस साल इस दिन के लिए खास थीम निर्धारित की गई है, खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना, यानी फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। सरल शब्दों में कहें तो मौसम का बदलना, अचानक आने वाला सूखा, बाढ़ या फिर सप्लाई चेन में आने वाली कोई भी रुकावट, कुछ भी हो जाए, हर इंसान तक सुरक्षित और पौष्टिक खाना पहुंचना ही चाहिए। हमें हर अनहोनी के लिए तैयार रहना होगा ताकि खाना कभी जहर ना बने। खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो इसके दो पहलू हैं। अगर हम सुरक्षित भोजन अपनाते हैं तो इसके कई फायदे हमें हमारी जिंदगी में मिलते हैं। जब खाना शुद्ध और बैक्टीरिया मुक्त होगा तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, बार बार हमें बीमार होना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ बीमारी नहीं होगी तो दवाइयों का खर्च बचेगा, देश का वर्क फोर्स मजबूत रहेगा। इसके अलावा बच्चों का बेहतर विकास, सुरक्षित पोषण मिलने से आने वाली पीढ़ी कुपोषण का शिकार नहीं होगी। ये बहुत जरूरी है श्रोताओं कि आज के डेट में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना सुरक्षित रहे और इसकी बर्बादी से हम बचे, तब ही हम किसी और को भी खाना हम उन्हें खाने पे बुला पाएंगे या हम किसी के घर खाने पे खुशी खुशी जा पाएंगे।

दोस्तों, भारत में भी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाना और इस पर बात करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में खाना खिलाना और खाना प्यार दिखाने का एक दूसरा बहाना भी होता है, दूसरा तरीका है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि इतनी आबादी वाले देश, हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड का कल्चर बहुत है, रेड़ी पटरी से लेकर होटलों तक हाइजीन बनाए रखना, साफ सफाई रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। इसके अलावा मिलावटखोरी का भी जो जाल हम आए दिन त्योहारों के सीजन में देखते हैं, इसे भी हम ही कम कर सकते हैं, क्योंकि ये मिलावट कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। ये मिलावटखोरी बच्चों के भविष्य को खोखला कर रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ गर्मी और उमस बहुत ज़्यादा होती है, जिससे खाना बहुत जल्दी ख़राब होता है। कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण बहुत सारे अनाज और सब्जियाँ खेतों से मंडियों तक पहुँचते पहुँचते ही सड़ जाती हैं या दूषित हो जाती है। यही वजह है कि भारत सरकार की संस्था FSSI ईट राइट इंडिया जैसे आंदोलन चला रही है, ताकि हर भारतीय शुद्ध और सही भोजन मिल सके। ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि सरकार और प्रशासन तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज आम उपभोक्ता होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। खाना बर्बाद ना हो, इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। बहुत सारा खाना यूं ही कूड़े में ना जाए, कोशिश करें कि इसे आसपास के लोगों तक पहुँचाएँ, अगर आपके पास खाना ज़्यादा हो तो। होटलों को भी ये बहुत ज़रूरी है कि अगर उनका खाना बच जाता है तो वे उन ज़रूरतमंदों को दें जो सच में दो वक्त की रोटी के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। इसके अलावा कच्चे और पके खाने को अलग रखने की कोशिश करें, ताकि बैक्टीरिया क्रॉस कंटामिनेट ना हो। सही तापमान पर खाना बनाना बहुत ज़रूरी है, खासकर नॉनवेज और उबले हुए खाने, ताकि हानिकारक बैक्टीरिया मर सके। ये बहुत ज़रूरी है कि खाने पर एक्सपायरी डेट देखें और देख करके ही सामान लें। बाज़ार में से कोई भी पैक्ड सामान खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि उस पर FSSI का लोगो, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ज़रूर हो। आज विश्व खाद्य दिवस सुरक्षा पर हमें ये खुद से ये वादा करना चाहिए कि हम सिर्फ स्वाद के पीछे नहीं भागेंगे, हम सेहत और सुरक्षा दोनों को चुनेंगे। खाद्य सुरक्षा एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, यह खेत से लेकर हमारी थाली तक का सफर है, जिसके लिए हम सभी सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं।

जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज में अभी आप सुन रहे थे दावते इश्क फिल्म का ये गीत। श्रोताओं नमस्कार, जमशेदपुर अभी आगे जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे, वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा।

0: मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर, अपनी रेडियो दोस्त रिंकी के साथ आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज एक और बेहद खास दिन है श्रोताओं, क्योंकि आज जन्मदिन है भारतीय सिनेमा और रंगमंच के एक ऐसे नायाब हीरे का जिसने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और बेमिसाल अभिनय से पिछले 4 दशकों से हमारे चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। हम बात कर रहे हैं अभिनेता टीकू तुलसानिया जी की। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। उनका जन्म 7 जून 1954 को महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक था, लेकिन उन्होंने अपने सफर की शुरुआत थिएटर यानी रंगमंच से की थी। थिएटर की दुनिया में उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग को इस कदर तराशा कि जो भी उन्हें देखता बस देखता रह जाता। सालों तक मंच पर लाइव ऑडियंस का दिल जीतने के बाद साल 1986 में उन्होंने फिल्म ड्यूटी से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली उसी साल आई फिल्म आसमान से ऊंचा और उसके बाद आई सुपरहिट फिल्म दिल है कि मानता नहीं। उनके इस शानदार सफर की शुरुआत को आइए सेलिब्रेट करते हैं उनके अभिनीत इस गीत के साथ।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे टीकू तलसानिया जी की। 90 का दशक बॉलीवुड कॉमेडी का स्वर्णिम दौर था और टीकू जी उस दौर के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक थे। उनकी लाइनें, उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस सिनेमाघरों में ठहाके गूंजने पर मजबूर कर देते थे। उन्होंने आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर गोविंदा तक हर बड़े सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर किया और हर जगह उन्होंने अपनी एक अलग अमिट पहचान बनाई। उनके कॉमिक टाइमिंग फिल्मों में मिस्टर बेचारा, बोल राधा बोल, जो जीता वही सिकंदर, जुड़वा, प्यार तो होना ही था जैसी फिल्में हैं और इनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। टीकू तलसानिया जी अक्सर हमने फिल्मों में हंसते हंसाते देखा, लेकिन ये बहुत सोचने वाली बात है कि संजय लीला बंसाली की ब्लॉकबस्टर फिल्म देवदास में धर्मदास के किरदार में उन्होंने अपनी संजीदगी दिखाई। उन्हें ये साबित कर दिया कि अभिनय सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं है। उनके इस बेमिसाल योगदान के लिए इंडस्ट्री में हमेशा सराहा गया। कॉमिक रोल्स में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया गया। उनके थिएटर में योगदान के लिए उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट और गौरव पुरस्कारों से भी नवाजा गया। और टीकू जी हमेशा कहते हैं कि दर्शकों के चेहरे की मुस्कान ही उनका सबसे बड़ा अवार्ड है। टीकू तलसानिया जी के जन्मदिन पर पूरा देश और उनके करोड़ों फैंस उन्हें सलाम कह रहे हैं। 70 से ज्यादा की उम्र में भी उनका अभिनय के प्रति जज्बा और उनकी एनर्जी आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। वह आज भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, थिएटर और फिल्मों में सक्रिय हैं और हमें एंटरटेन कर रहे हैं। हम उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं और यूं ही मुस्कुराते रहने की भी, और अपनी इसी अदाकारी से हमारे जीवन में वो खुशियों के रंग भरते रहें। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म प्यार तो होना ही था से ये गीत।

श्रोताओं, अब बात सोशल मीडिया इंटरनेट की लत से। आज के सोसाइटी में ये देखा गया है कि जिन माता पिता का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उनके बच्चों में फ़ोन की लत लगने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। जिस तरीके से जंक फूड हमारे शरीर को खराब तबाह करने के लिए काफ़ी है, उसी तरीके से रील स्क्रॉलिंग भी जंक फूड की तरह ही मेमोरी और फोकस को कमज़ोर कर रहा है। लोगों में रील्स देखने की आदत यूं तो बढ़ी ही है, खासकर बच्चों और युवाओं में ये आदत देखी जा सकती है, लेकिन बड़े भी इससे उतने ही प्रभावित हैं। वे खुद स्क्रीन टाइम को कम नहीं कर पाते, लेकिन बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो उनके कहने पर कम कर दें। रील स्क्रॉल के कई दुष्प्रभाव हैं और इससे आपकी याददाश्त ध्यान भी कमज़ोर होता है। ऐसे में फ़ोन एडिक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्क्रीन टाइम निर्धारित करता है कि आपको फ़ोन की लत है या नहीं। ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स पर रैंडम ही यूं ही अपनी उंगलियों को नचाते रहना किसी जंक फूड की तरह है। एक स्टडी के मुताबिक हर तरह के कॉन्टैक्ट की आदत याददाश्त और फोकस को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बड़े भी अपने आप को इन तरह के ऐप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से दूरी बनाने की ज़रूर कोशिश करें।

और दोस्तों कुछ इसी तरीके का प्यार आज के समय में हम बड़ों में देखते हैं अपने फ़ोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऐप्स, अकाउंट्स के लिए। और ये बात देखा गया है कि माता पिता का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से बच्चों में भी फ़ोन की लत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे वही करते हैं जो वो ज़्यादा देखते हैं। और ऐसे में अगर घर के बच्चे अपने बड़ों को ज़्यादातर समय फ़ोन पर बिताते देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसको और फ़ोन को या इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया ऐप्स को ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं, अपने पेरेंट्स बड़ों से भी ज़्यादा। ये बहुत ज़रूरी है कि घर में इंटरनेट, सोशल मीडिया ऐप्स देखने या उस पर समय बिताने का कुछ नियम तय करें, जैसे खाने और सोने के समय फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, फ़ोन को बेडरूम और डाइनिंग टेबल से ज़रूर से दूर रखें। फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करना और लत लगना दो अलग बातें हैं। ये देखा गया है कि इसकी तुलना, फ़ोन एडिक्शन की जो तुलना है वो नशे से की जाती है। ये किसी नशे की तरह इंसानी दिमाग को लत की ओर लेके जाता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताने लगे तो वो दोस्तों से दूरी बनाने लगता है, या पढ़ाई कम करता है, या काम पर इसका असर दिखने लगता है। ये संकेत है इस बात की ओर ध्यान देने का कि कहीं ना कहीं आप भले किसी तरीके के अल्कोहलिक नशे में नहीं हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया और इंटरनेट से ज़रूर लत में पड़ चुके हैं।

श्रोताओं, अगर आज भी आप चाहती हैं कि हम इस एडिक्शन से दूर रहें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जर्नलिंग करें। रोज़ 10 मिनट निकालें, पेन और पेपर उठाएं और जो भी मन में हो उसे लिख डालें। साथ ही साथ माइंडफुलनेस का भी अभ्यास ज़रूरी है। जो भी काम करें सचेत होकर के करें, पूरा ध्यान लगा करके करें, और मनोरंजन का विकल्प मोबाइल, इंटरनेट या सोशल मीडिया ऐप्स पर ढूंढने के बजाय शतरंज, लूडो जैसे बोर्ड गेम्स, पहेलियां, क्रॉसवर्ड सुलझा करके करें और किताबों से वापस से दोस्ती करें। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमें उस एडिक्शंस से दूर रखने में काफ़ी मदद करेंगी।

श्रोताओं, घड़ी पर यह इशारा हो चुका है कि आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक था। नमस्कार, जमशेदपुर के आज के इस अंक से दीजिए अपने रेडियो दोस्त रिंकी को इजाजत।

Skateboard. लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ, समाचार प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12:05 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम शीर्षक गीत का। लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में।

शीर्षक गीत के आज के इस सफर में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब जीवन में कोई बेहद प्यारा लगने लगता है तो उसके बिना मानो हर जगह सूना सा लगता है, क्योंकि हम कई बार ये कहते हैं कि दिल को जहां सुकून मिले वो जगह तुम हो, हंसते हंसते कबूल करूं हर गलती अगर सजा तुम हो, और ये जो दिल मेरा यूं जोर से धड़क रहा है इसकी वजह भी तुम हो।

बस जाती है जो पलकों में कोई सुनहरा ख्वाब तुम हो। फूल तो बहुत है चमन में मगर महकता हुआ गुलाब तुम हो। दिल के कलम से लिखी है मैंने ये किताब वो तुम हो। छाई हो महफिल में नशे की तरह हुस्न और इश्क का स्वाब तुम हो। छिपे हैं न जाने कितने राज तुम्हारे चेहरे में, जैसे लगता है कोई नकाब हो तुम। रोशनी जिसकी मेरी राहों में वो जलता हुआ माहताब हो तुम। मेरी जिंदगी में मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अलावा और कौन है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे लिए सबों से अच्छा बस तुम हो।

न जाने कैसे ये तीर जिगर के पार हुआ, न जाने क्यों ये दिल बेकरार हुआ। तू जब भी मेरे सामने आया ये दिल यूं ही तेजी से धड़का, फिर न जाने कब तुझसे इतना प्यार हुआ।

दूर हो फिर भी प्यार का एहसास होता है, तेरा ख्याल हर वक्त मेरे दिल के पास होता है, मुझे है तेरी कसम सोचता रहता हूँ हर वक्त तेरे बारे में, सचमुच प्यार का एहसास बेहद खास होता है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का हमारा शीर्षक गीत का ये सफर यहीं तक। आज के इस कार्यक्रम में हमने जिन फिल्मों को शामिल किया उनके नाम हैं वजह तुम हो, तुमसे अच्छा कौन है, ये मोहब्बतें हैं और तुझे मेरी कसम। इनमें आवाजें थी मिथुन, तुलसी कुमार, अल्तमाश फरीदी, तौसीफ अख्तर, अलका याग्निक, उदित नारायण, साधना सरगम का। श्रोताओं, इसी के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी को विदा। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12:30 होने को हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना।

अंगना के सभी श्रोताओं को दोस्त और बहन जयश्री का प्यार भरा नमस्कार जोहार। बहनों, आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा हो सुनिश्चित। बहनों, ये केवल एक नारा नहीं बल्कि एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की बुनियाद है। हर व्यक्ति को शुद्ध, पौष्टिक और सुरक्षित भोजन मिले, इसी संकल्प को दोहराने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2026 के लिए घोषित की गई आधिकारिक थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवन, बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। दूषित भोजन के कारण होने वाली बीमारियों और वैश्विक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके आर्थिक सामाजिक बोझ को समझना ही इस थीम का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही विज्ञान पर आधारित ऐसे समाधान खोजना और लागू करना है जिससे दुनिया के हर कोने में हर व्यक्ति तक सुरक्षित भोजन की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। बहनों, ये खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि खाद्य सुरक्षा का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। असुरक्षित या दूषित भोजन जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या केमिकल होते हैं, 200 से अधिक बीमारियों का कारण बनते हैं। सुरक्षित भोजन शरीर को उचित पोषण देता है और बीमारियों से बचाता है। और जब लोग स्वस्थ रहेंगे बहनों, तो चिकित्सा पर होने वाला खर्च घटेगा और उत्पादकता बढ़ेगी। खेतों से लेकर थाली तक भोजन को सुरक्षित रखकर हम भोजन की बर्बादी को भी रोक सकते हैं। भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा सुझाए गए 5 बुनियादी नियम हर स्तर पर लागू होने चाहिए। पहला, खाना बनाने और खाने से पहले हाथ, बर्तन और जगह को अच्छे से साफ कीजिए। दूसरा, कच्चे मांस, पोल्ट्री या सी फूड को अन्य खाद्य पदार्थों से अलग रखें ताकि क्रॉस कंटामिनेशन यानी दूषित कणों का मिलना ना हो। भोजन को विशेषकर मांस और अंडों को सही तापमान पर अच्छी तरह पकाएं ताकि हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाएं। और हाँ बहनों, पके हुए भोजन को लंबे समय तक सामान्य तापमान पर मत छोड़िए। इसे या तो गर्म रखिए या फ्रिज में सुरक्षित रखिए। भोजन बनाने के लिए हमेशा साफ पानी और ताजी और सुरक्षित खाद्य सामग्रियों का ही चुनाव करें, चाहे वे किसान हों, सरकारें हों, व्यवसायी हों या हम खुद उपभोक्ता। जब सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तभी सभी के लिए खाद्य सुरक्षा का सपना सच हो पाएगा। बहनों, आप सोचते होंगे ना कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका सीधा अर्थ है बहनों, देश के हर नागरिक को हर समय सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। विश्व बैंक के अनुसार खाद्य सुरक्षा के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला, उपलब्धता यानी देश में भोजन का पर्याप्त उत्पादन या आपूर्ति होना। दूसरा, पहुंच यानी एक्सेसिबिलिटी, भोजन हर व्यक्ति की भौतिक और आर्थिक पहुंच में होना यानी कि लोग उसे खरीद सके। और तीसरा, उपयोग यानी यूटिलाइजेशन, शरीर को भोजन से उचित पोषण मिलना जिसके लिए साफ पानी और स्वच्छता भी जरूरी है। आज के परिवेश में भारत सरकार देश की विशाल आबादी तक भोजन पहुंचाने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 कानून देश के लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी, लगभग 80 करोड़ लोग को बेहद रियायती दरों पर राशन, गेहूं, चावल और मोटे अनाज पाने का कानूनी अधिकार देता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत NFSA के लाभार्थियों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है, जिसने हाल के वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद देश में भूखमरी को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। और बहनों, वन नेशन वन राशन कार्ड, इस तकनीक आधारित व्यवस्था से प्रवासी मजदूर देश के किसी भी कोने में मौजूद राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं। बहनों, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन के तहत पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्कूलों में मध्याह्न भोजन के तहत अब आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 से युक्त फोर्टिफाइड चावल बांटे जा रहे हैं ताकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। बहनों, किसानों को सही समय पर खाद, उन्नत बीज और मौसम की जानकारी देकर उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए PM किसान समृद्धि के

केंद्र हैं और डिजिटल कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI अनाज की बर्बादी रोकने के लिए पारंपरिक गोदामों की जगह स्टील के आधुनिक साइलो बना रहा है। वर्तमान प्रयासों के बावजूद बहनों, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और कुपोषण भारत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और इन्हें हल करने के लिए हमें कुछ जरूरी कदम उठाने बेहद जरूरी हैं। लगातार बदलते मौसम, बेमौसम बारिश और सूखे से फसलों को बचाने के लिए हमें ऐसी फसलों की किस्मों को बढ़ावा देना होगा जो सूखे और अत्यधिक तापमान को सहन कर सकें। धान और गेहूं पर अत्यधिक निर्भरता को कम करके बाजरा, ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन और खपत को बढ़ाना होगा। ये कम पानी में उगते हैं, जलवायु परिवर्तन को झेल सकते हैं और पोषण से भरपूर हैं। बहनों, भारत में आज भी रखरखाव की कमी के कारण हर साल टन भर फल, सब्जियां और अनाज बर्बाद हो जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर केंद्रीकृत कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क बनाना होगा और इसके लिए काम चल रहा है। खेतों से बाजारों तक कनेक्टिविटी को सुधारना होगा ताकि फसलें खराब ना हो। किसानों को केवल चावल और गेहूं उगाने के बजाय दालें, तिलहन, फल और सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इससे न केवल मिट्टी की सेहत सुधरेगी बहनों, बल्कि देश की पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। कृषि में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत को अपनाते हुए ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम को अनिवार्य स्तर पर ले जाना होगा, क्योंकि पानी की कमी भविष्य में खाद्य उत्पादन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत ने अनाज उत्पादन के मामले में हरित क्रांति के बाद आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, लेकिन अब हमारा ध्यान मात्रा से गुणवत्ता पर होना चाहिए। जब देश का हर नागरिक कुपोषण मुक्त और स्वस्थ होगा, तभी वास्तविक खाद्य सुरक्षा हासिल होगी। और जब हमने खाद्य सुरक्षा पर इतनी सारी बातें की तो खाने की याद तो बिल्कुल आना लाजमी है और मुझे भी याद आ रहा है। वैसे एक गाना भी मुझे याद आ रहा है जो कि 1972 में आई फिल्म वफा का है, जिसमें खाने की बातों के साथ ही साथ थोड़ा सा रोमांस का भी तड़का है। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

0: बहनों, बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। जब हम एक बच्चे से उसका बचपन छीनकर उसे मजदूरी में धकेल देते हैं, तो असल में हम उस देश के भविष्य को अंधकार में डाल रहे होते हैं। और बाल मजदूरी को रोकने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हम मनाते हैं हर साल 12 जून को। और इस साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स इन द चाइल्ड लेबर। अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करें, बाल श्रम समाप्त करें। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि बाल श्रम को पूरी तरह खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वादे और कानून बनाए गए हैं, अब उन्हें जमीनी स्तर पर पूरी सख्ती और सक्रियता के साथ लागू करने का समय आ गया है। बाल मजदूरी अब भी मुख्य समस्याओं में से एक है। बाल मजदूरी समस्या और समाधान, इस विषय पर हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता। वार्ताकार हैं अधिवक्ता विनीता मिश्रा।
1: आकाशवाणी द्वारा प्रसारित इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार, जोहार। सबसे पहले तो मैं विनीता मिश्रा, अधिवक्ता जमशेदपुर से आभार व्यक्त करती हूँ आकाशवाणी द्वारा संचालित इस अंगना कार्यक्रम के आयोजकों को, जिन्होंने मुझे आज इस विशेष विषय बाल मजदूरी समस्या और उसके समाधान के लिए अपना विचार व्यक्त करने पर मुझे अवसर प्रदान किया। आज हमारे देश में बाल मजदूरी एक ही बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनकी क्षमता, शिक्षा और विकास के अवसर से वंचित कर आर्थिक लाभ कमाने वाले जोखिमपूर्ण कामों में लगाना, जो बच्चों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। भारत में बाल मजदूरी को रोकने के लिए कई सख्त कानूनी और संवैधानिक उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें बाल श्रम निषेध अधिनियम और मुफ्त शिक्षा का अधिकार मुख्य रूप से शामिल है। इसके उल्लंघन करने पर कड़ी से कड़ी सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कुछ कारगर उपाय कानून के माध्यम में वर्णित हैं, जिसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खादान या अन्य खतरनाक कामों में लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 39 ई और एफ राज्य को यह निर्देश देता है कि वह ऐसी नीतियां बनाए जिससे बच्चों का आर्थिक शोषण ना हो और उन्हें स्वस्थ वातावरण मिले। बाल श्रम अधिनियम 1986, जिसका संशोधन 2016 में किया गया, इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से सभी प्रकार के व्यवसायों और प्रतिष्ठानों में काम करना गैर कानूनी है। 14 वर्ष से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक उद्योगों में काम करने पर, जैसे खदानें, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे इत्यादि बनाने वाले खदानों में काम करना कानूनी अपराध माना गया है, जिसमें दंड और सजा का भी प्रावधान है। कानून का उल्लंघन करने पर बच्चों से मजदूरी कराने वाले नियोक्ता या मालिक को 6 माह से 2 साल तक की जेल की सजा या 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति दोबारा इस अपराध का दोषी माना जाता है तो उसकी सजा 1 वर्ष से 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। बाल मजदूरी रोकने के लिए कई उपाय बनाए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा का प्रचार प्रसार। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना ताकि वो स्कूल जाएं और काम पर नहीं। जागरूकता अभियान के तहत जनता के बीच जागरूकता फैलाना ताकि उसके दुष्परिणामों के बारे में वह जागरूक हो सकें और बाल मजदूरी से बचे रहें। बाल श्रमिकों का पुनर्वास, बाल मजदूरों को शिक्षा और रोजगार कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना, सामाजिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करना। कुछ एनजीओ और कुछ अन्य सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से बाल मजदूरी को रोका जा सकता है ऐसी संस्थाएं इनके खिलाफ कई अभियान चला रही हैं। कानूनी प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल मजदूरी निषेध कानूनों का सही सख्ती से पालन करने और उनके उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जो इस बाल मजदूरी को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। साथ ही परिवारों का समर्थन, उनके परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान कर ताकि बच्चों को काम पर न भेजें बजाय स्कूल भेजें। ऐसे कई उपाय हैं जिसके माध्यम से बाल मजदूरी को रोकथाम लगाई जा सकती है। आज भारत सरकार ने बाल श्रम के रोकने के लिए कई और भी कदम उठा रहे हैं, जिसमें CSR और कॉरपोरेट की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करके इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बाल श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करके इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शिक्षा की अनिवार्यता और मुफ्त शिक्षा को पूरी तरह से लागू कराकर इस सारी समस्याओं को रोका जा सकता है। आज यह एक भयावह रूप लेती जा रही है। हमारी कुछ NGO हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कई ऐसी ह्यूमन राइट्स की संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं। अंत में मैं सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि बाल मजदूरी जैसी समस्या के समाधान के लिए आप भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। जहां भी आपके आसपास हो रहे बाल मजदूरी दिखे उनके खिलाफ शिकायत करें और कानूनी रूप से उसमें आप मदद ले सकती हैं, प्रशासन के द्वारा आप सहायता ले सकती हैं। जय हिंद, नमस्कार।
0: बहनों, अभी आप सुन रही थी अधिवक्ता विनीता मिश्रा से बाल मजदूरी समस्या और समाधान विषय पर वार्ता। बहनों, जब बात हम करते हैं बच्चों की, तो सच कहें तो मैं आप सबसे भी यह अपील करना चाहूंगी कि बाल मजदूरी रोकिए और बचपन बचाइए। ये केवल एक नारा नहीं बहनों, बल्कि एक सभ्य और प्रगतिशील समाज के निर्माण का सबसे जरूरी संकल्प है। बाल मजदूरी रातों रात पैदा हुई समस्या नहीं है, इसकी जड़ें समाज की कई कमियों से जुड़ी है। भारत और अन्य विकासशील देशों में बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण गरीबी है। गरीब परिवारों के लिए बच्चा एक कमाऊ सदस्य बन जाता है, जिसे परिवार की बुनियादी जरूरतें जैसे कि भोजन, कपड़ा पूरी हो सके। कई माता पिता शिक्षा के महत्व को भी नहीं समझ पाते और उन्हें लगता है कि स्कूल जाने से बेहतर है कि बच्चा कोई हुनर सीखे या पैसे कमाए। और नियोक्ता बच्चों को काम पर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वे वयस्कों की तुलना में बहुत कम वेतन पर काम कर जाते हैं, ज्यादा समय तक काम करते हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाते। हालांकि देश में कड़े कानून मौजूद हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार या निगरानी की कमी के कारण नियमों का उल्लंघन भी होता रहता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बहनों, बाल मजदूरी एक बच्चे के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, जिसका असर पूरे देश पर पड़ता है। कम उम्र में कारखानों, चूड़ी उद्योगों, पटाखा फैक्ट्रियों या खेतों में कीटनाशकों के बीच काम करने से बच्चे कुपोषण, सांस की बीमारियों और शारीरिक विकृति का शिकार हो जाते हैं। उनका मानसिक विकास रुक जाता है और वे बचपन के आनंद से वंचित होकर तनाव और अवसाद में जीने लगते हैं। गरीबी के कारण जो बच्चे काम करते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, जिससे वो अशिक्षित और अकुशल रह जाते हैं। बड़े होने पर भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती और वो गरीब ही रह जाता है। बहनों, हम सबको एक जागरूक नागरिक बनना होगा। होटल, ढाबों, चाय की दुकानों या घरेलू काम के लिए बच्चों को रखने का कड़ा विरोध करना होगा। अगर हम किसी दुकान पर बाल मजदूर को देखते हैं, वहां से सामान खरीदने का बहिष्कार कीजिए और दुकानदार को टोकिए। अगर आप अपने आसपास किसी बच्चे को शोषण का शिकार या मजदूरी करते हुए देखते हैं, तो मूक दर्शक मत बनिए। 1098 चाइल्ड लाइन पर तुरंत कॉल करें और ये एक मुफ्त और गोपनीय सेवा है। सरकार के पेंसिल पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी आप दर्ज

कर सकते हैं। अपने आसपास के वंचित बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनके माता पिता को प्रेरित कर सकती हैं। उन्हें सरकारी योजनाओं जैसे कि मुफ्त शिक्षा, मिड डे मील के बारे में बताइए। बहनों, बच्चों के हाथ में औजार नहीं किताब होनी चाहिए, उनके कंधों पर जिम्मेदारी नहीं स्कूल का बस्ता होना चाहिए। बाल मजदूरी को रोकना केवल एक कानूनी मजबूरी नहीं बल्कि हमारा नैतिक कर्तव्य है। जब हम एक बच्चे का बचपन बचाते हैं तो हम देश को एक डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या एक जिम्मेदार नागरिक सौंपते हैं। आइए मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने स्तर पर बाल श्रम का पुरजोर विरोध करेंगे और हर बच्चे को मुस्कुराने, खेलने और पढ़ने का उसका हक दिलाएंगे। अब बात जब बच्चों की हो रही है बहनों, तो बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और इस वक्त सभी लोग कोशिश करते हैं कि ठंडी ठंडी पहाड़ी वादियों में जाएं। पर पहाड़ी वादियों जैसे कि शिमला, मनाली जैसे खूबसूरत हिल स्टेशनों पर इस बार पारंपरिक ठंड की जगह जो बढ़ती गर्मी देखने को मिल रही है, वह पर्यावरणविदों और पर्यटकों दोनों के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इन पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। पहाड़ों में अचानक आई इस तब्दीली और वैश्विक स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन के पीछे कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और स्थानीय कारण हैं। अब हमारे भारत की बात लें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के दौरान ठंड और बर्फबारी का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। हाल के वर्षों में ये विक्षोभ बेहद कमजोर और अनियमित रहे हैं। सर्दियों में बर्फबारी और बारिश में भारी कमी दर्ज की गई। जब पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर नहीं जमती तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को गर्म करती हैं। बर्फ की अनुपस्थिति के कारण गर्मी को परावर्तित करने वाला अल्बिडो प्रभाव कम हो जाता है और जमीन तेजी से तपने लगती है। बहनों, मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों के ऊपर भी हीट डोम जैसी स्थिति बन रही है। उच्च वायु दाब के कारण गर्म हवा एक ही जगह पर कैद होकर रह जाती है। ये प्रणाली बादलों को बनने से रोकती है, जिससे साफ आसमान के कारण सीधी और तेज धूप धरातल तक पहुंचती है और तापमान को तेजी से बढ़ाती है। शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशन अब केवल शांत हिल स्टेशन नहीं रहे बल्कि तेजी से कंक्रीट के जंगलों में बदल रहे हैं। पर्यटकों के लिए होटल, होमस्टे और 4 लेन के हाईवे बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पहाड़ों को काटा जा रहा है। कंक्रीट और कोलतार की सड़कें दिन भर गर्मी को सोखती हैं और रात में उसे छोड़ती हैं। मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक अपनी गाड़ियां लेकर पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। इन वाहनों के धुएं और एसी से निकलने वाली गर्मी स्थानीय तापमान को कई गुना बढ़ा देती है। बहनों, मानवीय गतिविधियों जैसे कोयला, पेट्रोलियम का दहन, औद्योगिक इकाइयों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में लगातार बढ़ रही हैं। ये गैसें सूरज की गर्मी को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती हैं और जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है और इससे पूरी पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार मैदानी इलाकों की तुलना में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों का तापमान वैश्विक औसत से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इसे एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग कहते हैं और यही वजह है कि पहाड़ों का मौसम चक्र तेजी से बिगड़ रहा है। सड़क के चौड़ीकरण और शहरीकरण के नाम पर लाखों देवदार और पाइन के पेड़ों को काटा जा रहा है और पेड़ न केवल हवा को शुद्ध रखते हैं बल्कि वे वातावरण में नमी बनाए रखकर माइक्रो क्लाइमेट को सुरक्षित रखते हैं, यानी स्थानीय ठंडी जलवायु को सुरक्षित रखते हैं। पेड़ों के घटने से ये प्राकृतिक सुरक्षा कवच नष्ट हो गया है और प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का असामान्य रूप से गर्म होना अलनीनो कहलाता है। वैश्विक वायुमंडलीय चक्र को प्रभावित करने वाली इस घटना के चलते भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में मानसूनी हवाएं कमजोर हो जाती हैं और सूखे के साथ अत्यधिक गर्मी पड़ती है। अब इससे क्या होगा बहनों? तापमान बढ़ने से उत्तर भारत की नदियों को पानी देने वाले ग्लेशियर समय से पहले और तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे भविष्य में जल संकट गहरा सकता है। सेब की खेती, जिसके लिए खास चिलिंग आवर्स यानी ठंडक की जरूरत होती है, अब ऊंचाई वाले इलाकों की ओर खिसक रही है और कम ऊंचाई पर सेब की फसल खराब हो रही है। पहाड़ों के सूखे और गर्म होने के कारण चीड़ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो जैव विविधता के लिए घातक है। बहनों, हिल स्टेशनों में इस बार दिख रही गर्मी कोई सामान्य मौसमी बदलाव नहीं बल्कि धरती के बीमार होने का प्रत्यक्ष संकेत है। अगर हमने पहाड़ों की वहन क्षमता से अधिक निर्माण कार्य और वनों की कटाई को तुरंत नहीं रोका तो आने वाले समय में ये हिल स्टेशन अपनी पहचान पूरी तरह खो देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम सब पर्यावरण का ख्याल रखें, तभी तो हम फिर से
अपने

प्राकृतिक दृश्यों का और उसके सुकून का मजा ले सकते हैं। इतने गंभीर विषय पर चर्चा के बाद चलते चलते आइए सुनते हैं मधुमति फिल्म का ये खूबसूरत गीत मुकेश की आवाज में।

0: और बहनों, वक्त का ये इशारा है कि हमें आपसे लेनी होगी विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ अपनी दोस्त और बहन जयश्री को दीजिए विदा। पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार।
1: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक बजने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ, समाचार प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एजू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, विश्व में सबसे सस्ती रसोई गैस पाने वाले देशों में भारत। उज्ज्वला लाभार्थियों को 642 रुपए में मिल रहा सिलेंडर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

0: नवीन आज जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों तथा आईटी सेल के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर बाद सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मंथन। सिमडेगा की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आम को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम का बाजार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की सराहना, बताया लोकल टू ग्लोबल का सशक्त उदाहरण। पाकुड़ में जालसाजी को लेकर दर्जन भर पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ FIR दर्ज, रिपोर्ट में छेड़छाड़ का आरोप। और गुजरात में प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित, रांची के रोशन थापा ने सीनियर बी कैटेगरी के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के लाभार्थी को पहले 4 रिफिल पर सालाना 300 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिलने के बाद 14 किलो 200 ग्राम के LPG सिलेंडर के लिए 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। मंत्रालय ने बताया है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा चुकाई गई प्रभावी कीमत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित पड़ोसी देशों में खाना पकाने की गैस की कीमतों से कम है। आकाशवाणी रांची के समाचार कक्ष से संपादक मीनाक्षी राय के साथ मैं आसिया नाजली।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को भी दोहराया जिसमें उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य और एक मजबूत राष्ट्र के लिए खाद्य तेल का इस्तेमाल 10% कम करने और संतुलित आहार अपनाने की बात कही थी। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, प्रदेश प्रवक्ता तथा आईटी एवं मीडिया सेल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर बाद सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। इससे पहले अपने एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने श्री नवीन पुकारो पहुंचे। भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।
2: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं और मुझे लगता है कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में बहुत ही ऊर्जा का संचार होगा और जिस तरह से उनके कदम पड़ते ही बंगाल विजय हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड में उनके कदम पड़े हैं, हम आने वाले समय में बोकारो विजय भी करेंगे और झारखंड विजय भी करेंगे।
0: रांची से बोकारो जाने के क्रम में रामगढ़ में श्री नवीन ने शहीद निर्मल महतो चौक पर निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कल नामांकन की आखिरी तारीख है। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब राजनीतिक दलों की नजर आगे की रणनीति और संभावित चुनावी समीकरणों पर टिकी है। झारखंड के सिमडेगा जिले की महिला किसानों के उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम भेजी गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस उपलब्धि को वोकल फॉर लोकल से लोकल टू ग्लोबल का एक शानदार और सशक्त उदाहरण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि अपीडा के निरंतर प्रयासों से स्थानीय किसानों को बेहतर मूल्य, महिला किसानों को नई पहचान और भारत के कृषि निर्यात को नई गति मिल रही है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और

0: फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। पाकुड़ में जिला खनन कार्यालय से निर्गत रिपोर्ट में छेड़छाड़ और जालसाजी किए जाने को लेकर दर्जन भर पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने पत्थर खदानों का लीज हासिल करने के लिए खनन कार्यालय द्वारा निर्गत सन्निहित रिपोर्ट में छेड़छाड़ और जालसाजी कर राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाधान निर्धारण प्राधिकरण रांची से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने एवं खनन पट्टा हासिल करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराए। जामताड़ा जिला में उपायुक्त आलोक कुमार के निर्देश पर वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में जांच टीम ने जिले के चिन्हित पंचायतों में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
1: हमारे सारे वरीय पदाधिकारी हर एक पंचायत में जाके ग्राउंड लेवल पे जो हमारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है और उसमें उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हम लोग और कैसे कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं ग्राउंड लेवल पे जो हम लोगों को इनपुट मिलेगा उसको हम लोग एज अ डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे, जिससे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो झारखंड सरकार की योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनका हो सके।
0: कोडरमा के झुमरी तिलैया में जूट से उत्पाद तैयार कर न सिर्फ महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि प्लास्टिक मुक्त भारत के संकल्पों को साकार करने में जोर जोर से जुटी हैं। इंदरवा की रहने वाली राधा यादव के साथ तकरीबन 20 महिलाएं महिला सशक्तिकरण के साथ प्लास्टिक मुक्त के संदेशों को साकार करने में जुटी हैं।
2: मेरे साथ 20 महिलाएं हैं, कुछ बच्चे भी हैं जो 18 से 20 21 साल के हैं। ये सबको हम एक जगह इकट्ठा किए। जब उन लोग के हाथ में पैसा आया तब ये लोग अच्छा लगा कि ये अपना पैसा है। अब सोचते हैं कि ये कुछ धीरे धीरे अगर ये लेडीज भी सीखे और अपना व्यापार कर सके और इससे भी और आगे जाएं।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपये प्रति किलो है। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रांची द्वारा फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक CP सिंह और महापौर रोशनी खलको शामिल हुए। सभी अतिथियों ने युवाओं को फिट इंडिया आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। गुजरात में आयोजित प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में रांची के रोशन थापा ने सीनियर बी कैटेगरी के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत और झारखंड का मान बढ़ाया। 78 देशों में 400 से ज्यादा खिलाड़ियों के बीच रोशन ने अपने उत्कृष्ट कौशल, शारीरिक संतुलन और कठिन आसनों से जजों को प्रभावित कर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, विश्व में सबसे सस्ती रसोई गैस पाने वाले देशों में भारत। उज्ज्वला लाभार्थियों को 642 रुपए में मिल रहा सिलेंडर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों तथा IT सेल के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। दोपहर बाद सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मंथन। सिमडेगा की महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा उगाए गए आम्रपाली आम को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम का बाजार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की सराहना, बताया लोकल टू ग्लोबल का सशक्त उदाहरण। पाकुड़ में जालसाजी को लेकर दर्जन भर पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ FIR दर्ज, रिपोर्ट में छेड़छाड़ का आरोप। और गुजरात में प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित, रांची के रोशन थापा ने सीनियर बी कैटेगरी के ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी।

0: का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 1:20 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में।
1: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
7: ज्ञान विज्ञान
8: इतिहास के पन्नों से,
9: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
10: मौसम का मिजाज,
7: अपने शहर की खबरें,
9: बातों मुलाकातों के साथ
10: सुरीला मनोरंजन
7: और भी बहुत कुछ।
6: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
10: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
9: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
6: नमस्कार जमशेदपुर।
1: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

फिल्म संगीत के इस संगीतमय सफर में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ के बाद ये समय है थोड़ा रुकने का, थोड़ा ठहरने का, कुछ पल अपनों के साथ अपनों की याद में बिताने का। तो अगर कर रहे हैं फोन की स्क्रीन को अप एंड डाउन, तो रोक दीजिए और करिए अपने और अपने प्रियजनों को एक कॉल। हो सकता है उन्हें भी हो आपके इस कॉल का इंतजार। दोस्तों, अगर इस समय और इन पलों में साथ हो संगीत का, तो ये पल बेहद खूबसूरत बीतेंगे। करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस गीत के साथ।

राहत फतेह अली खान की आवाज में अभी आपने सुना लव आजकल फिल्म का ये गीत। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत दिया था प्रीतम ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में फिल्म संगीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा बस इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,

जलवायु साक्षरता निष्कर्ष, यूनेस्को का एक संदेश। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसे नजरअंदाज करना इंसानों और धरती दोनों को खतरे में डालता है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है, मौसम और पर्यावरण तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब कुछ करने का समय आ गया है। असली बदलाव सिर्फ नीतियां बनाने वाले कमरों में नहीं, बल्कि समुदायों, स्कूलों और घरों में भी शुरू होता है। यूनेस्को ने 10 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर सबके लिए कई भाषाओं में जलवायु साक्षरता से जुड़ी सामग्री तैयार की है। जलवायु विज्ञान को समझना हमें कार्यवाही करने की शक्ति देता है। आप भी जलवायु की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आइए ज्ञान, एकता और आशा के साथ बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें। यह यूनेस्को का संदेश था। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अपनी रेडियो दोस्त रिंकी।

अरिजीत सिंह नीति मोहन की आवाज में अभी आपने सुना शमशेरा फिल्म का ये गीत। करण मल्होत्रा के लिखे गीत को संगीत दिया है मिथुन ने। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आप सुनेंगे सलमान अली और मुस्कान की आवाज में। समीर अंजान और साजिद के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने। फिल्म का नाम दबंग 3।

अखिल सचदेवा मंसूर गुजराल की आवाज़ में अभी आपने सुना भूत पार्ट वन फिल्म का ये गीत। गीत और संगीत अखिल सचदेवा का। श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति होगी अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीतकार हैं सईद कादरी, संगीत दिया है मिथुन ने, फिल्म का नाम मलंग। श्रोताओं, लुत्फ उठाइए इस गीत का और दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी को विदा।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 2 बजने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज। उसके ठीक बाद 2:15 पर समय होगा दोपहर समाचार का। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ, समाचार प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्रों के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
5: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातिये क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी

0: में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। 2:30 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस।

फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो सखी रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस गीत के साथ।

जावेद अली, इरशाद अशरफ, शादाब की आवाज़ में अभी आपने सुना तुम मिले फिल्म का ये गीत। सईद कादरी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे मुस्तफ़ा जाहिद की आवाज़ में। गीतकार हैं कुमार, संगीत दिया है प्रणय रिजिया ने। फिल्म का नाम रागिनी MMS।

अल्तमाश फरीदी, शादाब फरीदी, राहत फतेह अली खान की आवाज़ में अभी आपने सुना नमस्ते इंग्लैंड फिल्म का ये गीत। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था मनन शाह ने। श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आप सुनेंगे जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। कुणाल वर्मा के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है पायल देव ने। फिल्म का नाम मरजावा। श्रोताओं, लुत्फ उठाइए इस गीत का और दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी को विदा।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। अब से कुछ ही क्षणों बाद 3:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। 3:15 पर समय होगा कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत का। 3:30 पर आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। 3:45 पर समय होगा कार्यक्रम लोकगीत का। 4:02 पर आप सुनेंगे सामुदायिक गीत पाठ। 4:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 5:02 पर युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा युवानी। 5:30 पर समय होगा कल कारखाने का।

2:55 होने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ, समाचार प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा और विद्यार्थी समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। मंत्री ने इस दौरान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि फिट इंडिया केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का राष्ट्रीय आंदोलन है। उन्होंने हर नागरिक से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य में अवैध कोयला खनन अब केवल अपराध नहीं रहा बल्कि यह सत्ता, प्रशासन, पुलिस और माफियाओं के गठजोड़ से चलने वाला एक संगठित काला साम्राज्य

0: बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि धनबाद के महेशपुर स्थित एक प्लांट के पास तीसरी बार अवैध सुरंग का मिलना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि बिना राजनीतिक संरक्षण इतने बड़े स्तर पर अवैध खनन संभव नहीं। झारखंड प्रवास के दूसरे दिन आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रांची से बोकारो जाते समय कई स्थानों पर स्वागत किया गया। इस दौरान रामगढ़ और बोकारो जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा, जय घोष और गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से राज्य की जनता में गजब का उत्साह है।
1: सत्ते के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत दिनों के बाद रामगढ़ की धरती पर उपस्थित हुए हैं और उनका एक निजी कार्यक्रम है जिसके तहत वो बोकारो जा रहे हैं, वापस भी लौट किसी रास्ते पर दो घंटे के बाद में लौटेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा चुनाव के मामले में राज्य की सत्ता में शामिल गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्री ने रांची में कहा कि चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों के नामों का अंतिम निर्णय पार्टी लेगी।
2: गठबंधन का आपस में ही खींचतान है, सरकार की स्थिति ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं काफी बयानबाजी आपस में लोगों का, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेडी के लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शायद ठीक नहीं है जो दिख रहा है।
0: ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे ने आम लोगों से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत बीएलओ के घर आने पर सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि परिवार और रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी ध्यानपूर्वक साझा करने और फॉर्म सही ढंग से भरने पर भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मंत्री ने कहा कि आम जनता के सहयोग से ही एक मजबूत और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार हो सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक यात्री बस से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी टिकट बरामद किया है। पुलिस ने बस चालक और एक बस कर्मी को हिरासत में लिया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध लॉटरी कारोबार का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन शामिल है। चतरा जिले में एक जांच चौकी के पास पुलिस बैरिकेड से मोटरसाइकिल टकराने से दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने आज बताया कि दुर्घटना बागरा रांची मुख्य मार्ग पर जब्बा जांच चौकी के पास हुई। दोनों मृतक दुंदुआ गांव के निवासी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 3 बज रहे हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे रोजगार समाचार।

रोजगार समाचार कुछ इस प्रकार हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 220 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

सिक्योरिटी स्क्रीनर के लिए सामान्य, ओबीसी के लिए 750 हैं। वहीं असिस्टेंट सिक्योरिटी में ₹500 आवेदन शुल्क तथा एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और महिलाओं के लिए ₹100 निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने हेतु वेबसाइट aaiclas.aero पर लॉगिन कर सारी डिटेल्स देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया के अनुसार मेरिट आधारित ऑनलाइन इंटरैक्शन के बेसिस पर चयन किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। योग्यता के अनुसार ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए 60% अंकों के साथ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 50% अंकों के साथ 12वीं पास या 60% के साथ 3 वर्षीय ग्रेजुएशन की डिग्री या 60% के साथ बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। आईयू की गणना के अनुसार 1 जुलाई 2027 के आधार पर की जाएगी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच न्यूनतम 20 और अधिकतम 26 वर्ष निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क के अनुसार जो उम्मीदवार एनसीसी स्पेशल एंट्री और गेट परीक्षा के जरिए आवेदन कर रहे हैं उनसे फीस नहीं लिया जाएगा। अन्य के लिए ₹550 निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने हेतु वेबसाइट AFCAT की वेबसाइट afcat.cdac.in पर लॉगिन कर सारी जानकारियां देखी जा सकती हैं। चयन प्रक्रिया के अनुसार रिटन एग्जाम, SSB, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जून 2026 निर्धारित की गई है। रोजगार समाचार संपन्न हुआ।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3:05 होने को है श्रोताओं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे सुगम संगीत, लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में।

आनंदिता गुप्ता की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे भजन, और इसी के साथ सुगम संगीत का हमारा आज का ये सफ़र यहीं तक। दीजिए इजाज़त। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 3:15 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत का।

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी सुरी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं करण किस्कू और साथियों के स्वर में संथाली लोकगीत।

FM के 102.4 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आज के कलाकार हैं करण किस्कू व साथी। आइए सुनते हैं संथाली में ये अगली प्रस्तुति।

0: करण किस्कू और साथियों के स्वर में गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अनिमेश को दीजिए अनुमति।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 MHz पर। अगला कार्यक्रम श्रोताओं आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दादरा और भजन।

0: उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे दादरा और भजन, और इसी के साथ आज का हमारा उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं तक। दीजिए इजाज़त। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 3:45 होने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे लोकगीत का कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम लोकगीत सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं मिथिलेश मिश्रा और साथियों के स्वर में मैथिली लोकगीत।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत। आज के कलाकार हैं मिथिलेश मिश्रा व साथी। आइए सुनते हैं मैथिली में ये अगली प्रस्तुति।

0: मिथिलेश मिश्रा और साथियों के स्वर में गाए। इस लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम लोकगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अनिमेश को दीजिए अनुमति।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 4 बजने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का उद्घाटन किया। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में युवा और विद्यार्थी समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। मंत्री ने इस दौरान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि फिट इंडिया केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का राष्ट्रीय आंदोलन है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य में अवैध कोयला खनन अब केवल अपराध नहीं रहा बल्कि यह सत्ता प्रशासन पुलिस और माफियाओं के गठजोड़ से चलने वाला संगठित काला साम्राज्य बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि धनबाद के महेशपुर स्थित एक प्लांट के पास तीसरी बार अवैध सुरंगों का मिलना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे ने आम लोगों से अपील की है कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत बीएलओ के घर आने पर सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। मंत्री ने कहा है कि परिवार और रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी ध्यानपूर्वक साझा करने और फॉर्म सही ढंग से भरने पर भविष्य में कोई समस्या नहीं आएगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। दुमका

0: अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम श्रोताओं आप सुनेंगे सामुदायिक गीत पाठ।

0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग।
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ? सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
2: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
2: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गलू। क्या है?
2: कडल हक्की गलू।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप
1: हाँ।
0: सब लिख लीजिए।
3: हाडू तिहवो हारू तिहवो
2: हाडू तिहवो हारू तिहवो
3: कडल करेय खगकुला
2: कडल करेय खगकुला
3: यनी तो मुगिला
2: यनी तो मुगिला
3: उद्द अगला
2: उद्द अगला जी की दनी तू
3: बांदला
2: बांदला।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टंजा है।
1: हाँ?
0: आगे का स्टंजा है बान लोक नगुव नाका
2: बान लोक नगुव नाका
3: हारो हक्की पालीगे
2: हारो हक्की पालीगे
3: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
2: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
3: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
2: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टंजा दूर दूर हारी हारी
2: दूर दूर हारी हारी
3: व्योम कानुआ बगे
2: व्योम कानुआ बगे हसीव मरेसी
3: वांछे मेरेसी
2: वांछे मेरेसी
3: दिगंत सेरो लघु बगे
2: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
3: याव नाडो यंथ काडो
2: याव नाडो यंथ काडो
3: हारो आसे हक्कीगे
2: हारो आसे हक्कीगे
3: मुक्त गगन नूरु काला
2: मुक्त गगन नूरु काला
3: ईजो शक्ति रेक्केगे
2: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम होना है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी। हाँ?
1: हाँ।
0: को हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
1: हाँ? हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं। पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना

0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना, यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
1: तकी तकी तकी तकी तकी तकी तकी।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना, वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुवनाक, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: तो बच्चों, अब इस पूरे गाने की धुन आपको याद हो गई है ना? अब घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करना, तो आप सब लोगों को ये गाना बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, करेंगे ना? अच्छा बच्चों, तो नमस्कार।
1: अब आप सुनिए कुछ देशभक्ति गीत।

सामुदायिक गीत पाठ। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 4:30 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अपनापन फिल्म के इस गाने में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों को। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वंश फिल्म के इस गाने में अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की मिली जुली आवाजें। गाने के बोल लिखे थे समीर ने और इसकी धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की मिली जुली आवाजों को अभी आप सुन रहे थे नायक फिल्म के इस गीत में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई थी एआर रहमान ने। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हमने लिया है फिल्म प्रेम रोग से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। शब्द रचना नरेंद्र शर्मा की है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गाने के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत की प्रस्तुति से मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त विभा को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। नमस्कार। फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 MHz पर। शाम के 5 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से समाचार मुख्यांश। कृपया प्रतीक्षा करें।

पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। एमबीए के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तथा बीबीए के लिए 5 जुलाई निर्धारित की गई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित।

0: कनाडा जैसी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में
1: कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
0: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
6: संदेश के बाद हम हाजिर हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, चुके आज दिन रविवार है, इसलिए आइए सुनते हैं युवाओं को संबोधित अंग्रेजी कार्यक्रम यूथ टाइम्स।

0: यूथ टाइम्स, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5:29 हो चुके हैं। अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं श्रमिक श्रोताओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने।

0: रविवार की इस प्यारी सी शाम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और इस शाम को हम बनाएंगे कुछ खास जानकारियों भरा और मनोरंजन से भरपूर। तो बने रहिए एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप सभी को रश्मि तिवारी का प्यार भरा नमस्कार।
1: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

श्रोताओं, भोजन की बर्बादी को रोकना और स्वच्छता अपनाना पर्यावरण की रक्षा तथा स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। सुनियोजित खरीदारी और भोजन को सही तरीके से स्टोर करने से बर्बादी कम होती है, जबकि साफ सफाई से भोजन जनित बीमारियों से बचाव होता है। आइए श्रोताओं, भोजन की बर्बादी को हम कैसे रोक सकते हैं जानते हैं। सबसे पहले योजना बनाएं कि खरीदारी पर जाने से पहले अपने फ्रिज पेंट्री की जांच करें। केवल उसी मात्रा में सामान खरीदें जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। बचे हुए खाने का उपयोग, जैसे बची हुई सब्जियों से सूप या शोरबा बनाएं, बासी रोटी या फलों से नए व्यंजन बनाने का प्रयास करें। खाद लेबल समझें। बेस्ट बॉय का अर्थ भोजन का खराब नहीं होना होता है, बल्कि ये उसकी गुणवत्ता का पैमाना है।

जैसे बचे हुए खाद, भोजन और छिलकों को कचरे में न फेंककर खाद के रूप में उपयोग करें। भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए USEPA और UNEP के सुझावों का पालन करें। साथ ही स्वच्छता की बात करें तो भोजन बनाने या खाने से पहले कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ जरूर धोएं। फलों और सब्जियों को बहते पानी से धोएं, लेकिन बैक्टीरिया फैलाने से रोकने के लिए कच्चे मांस, मुर्गी या अंडों को धोने से बचें। खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को खरीदने के तुरंत बाद फ्रिज में रखें और हमेशा एयरटाइट डिब्बों में बंद करें। खाना पकाने के कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। भोजन की बर्बादी कम करके श्रोताओं, आप न केवल पैसे बचाते हैं बल्कि पर्यावरण में मीथेन गैस और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करते हैं।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में ये था अनिरुद्ध फिल्म का गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और इसे संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं कुछ खास जानकारियों के साथ और जानकारी हासिल करते हैं वार्ता के जरिए। विषय है वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य एवं नैतिकता की स्थिति। वार्ताकार हैं किशोर कुमार। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: विश्व बाजार की व्यवस्था तेजी से बदल रही है। उद्योगों में परस्पर की प्रतिस्पर्धा में अपनी साख बनाए रहना एक चुनौती बन गई है। देश के चौमुखी विकास और विश्व में विकसित देशों के समकक्ष खड़े होने के लिए उद्योगों का शांतिपूर्ण संचालन आवश्यक है। इसी में उद्योग तथा वहां काम करने वाले कर्मचारियों का भविष्य निर्भर करता है। सरकारी नीतियां, शेयर होल्डर्स, ट्रेड यूनियन, सप्लायर, डीलर्स और बिक्री बाद ग्राहकों की सेवा तथा दूसरी तरफ बाजार में उपस्थित अपने अन्य प्रतिस्पर्धियों के साथ मुकाबला प्रबंधन की महती जिम्मेदारी होती है। उद्योग में प्रबंधन और यूनियन के बीच का संबंध एक दूसरे पर विश्वास भरोसा पर निर्भर करता है। प्रबंधन का उद्देश्य होता है कम से कम लागत में कैसे अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाया जाए। वहीं यूनियन अपने श्रमिकों के अच्छे जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए कम से कम परिश्रम में अधिक से अधिक तनख्वाह और अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी और समझौता का सहारा लेते हैं। दूरदर्शी प्रबंधन अपने संगठन में यूनियन के साथ एक अच्छे संबंध के महत्व को समझती है और वेतन समझौता तथा समय समय पर महंगाई के अनुसार वेतन वृद्धि का एक फॉर्मूला बनाकर रखती है। प्रबंधन और यूनियन के संबंधों में एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा बना रहे इसके लिए दोनों तरफ नैतिकता का महत्व बढ़ जाता है। पूरे विश्व में लंबे समय तक बाजार में बने रहने वाले उद्योगों का जब सर्वे किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि इनमें कौन सा तत्व है जो इन सबों में समान रूप से विद्यमान है, तो परिणाम यही प्राप्त हुआ कि उन उद्योगों में उनके यहाँ काम करने के लिए, संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी एक अपनी आचार संहिता थी और वहाँ के प्रबंधन और यूनियन उस आचार संहिता के पालन के लिए वचनबद्ध थे। दूसरी ओर अपने देश में कुछ एक उद्योगों को छोड़कर यह पाया गया है कि 90% से ऊपर उद्योगों में तालाबंदी के लिए गलत प्रबंधन ही जिम्मेदार होते हैं। अपने देश में टाटा जैसे उद्योगपतियों ने उद्योग में नैतिकता के महत्व को समझा और अपने सभी उद्योगों में प्रबंधन के लिए टाटा आचार संहिता को अनिवार्य बनाया। इसी आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में टाटा घराने के सभी उद्योगों ने अपने अपने यूनिट के लिए टाटा बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल का निर्माण किया। उसमें अलग अलग व्यापारिक गतिविधियों के लिए पॉइंट निर्धारण का एक मानक तैयार किया गया। इस मानक में व्यापार परिणाम तथा नेतृत्व को अधिक महत्व दिया गया है। अन्य बिंदुओं में उद्देश्यपूर्ण योजना, ग्राहक और बाजार, सूचना एवं विश्लेषण, मानव संसाधन तथा प्रबंध पद्धति पर अधिक बल दिया गया है। प्रतिवर्ष टाटा के सभी उद्योगों में एक दूसरे के यहाँ टीम भेजकर इसका ऑडिट करवाया जाता है। देश में और भी औद्योगिक संगठन हैं जो अपने यहाँ की कार्य संस्कृति में नैतिकता और चरित्र के महत्व को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। हम जब भी काम करते हैं तो सिर्फ काम ही नहीं करते बल्कि एक आदत भी बनाते हैं और यही आदत हमारे चरित्र का निर्माण करती है। इसी चरित्र निर्माण की प्रक्रिया पर हमारा भाग्य और दुर्भाग्य निर्भर करता है। हमें याद रखना चाहिए कि सफलता तभी मिलती है जब अवसर और मेहनत का मिलन नैतिकता की मौजूदगी में होता है। प्रबंधन की चुनौती है कि प्रत्येक व्यक्ति से पूरा पूरा काम कैसे लिया जाए। यदि कार्य का वातावरण सही होगा, सभी को यह विश्वास होगा कि उसके साथ अन्याय नहीं होगा, उसके काम को सराहा जाएगा, काम की सही कीमत मिलेगी, तो वह निश्चित रूप से अपने काम में अपना सर्वोत्तम देगा और तभी उद्योग की उत्पादकता और गुणवत्ता बनी रहेगी। हमारे जीवन का अधिकांश समय कार्यस्थल पर ही बीतता है, चाहे हम शॉप फ्लोर के मशीन पर काम करते हों अथवा ऑफिस में। कार्यस्थल के संबंध हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। कार्यस्थल पर हम विभिन्न स्थितियों का सामना करते हैं और इनसे उबरने के क्रम में हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि कार्यस्थल का वातावरण हमारे चरित्र निर्माण, ज्ञानार्जन तथा कौशल सीखने इत्यादि में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसी से सही विश्वास, आस्था, निष्ठा, सहानुभूति, समानुभूति इत्यादि बनाने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुंबई के डब्बे वालों की सफलता इसका एक बेहतर उदाहरण है, जहां किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण के बिना भी उन लोगों ने सिक्स सिग्मा की उपलब्धि प्राप्त की। हमें अपने काम पर गर्व करने की आदत विकसित करनी होगी। हमारा कार्य इतना अच्छा हो कि लोग हमारे काम की गुणवत्ता से हमारी पहचान करें, जैसे सचिन को क्रिकेट से पहचानते हैं। छोटे से छोटा काम भी इस तरह करना चाहिए जैसे कोई मूर्ति गढ़ी जा रही हो। लोग ईमानदारी, विश्वसनीयता, मित्रता एवं दूसरों की सहायता के प्रवृत्ति की सराहना करते हैं। आज के औद्योगिक परिदृश्य में पुराने तरीके और प्रणालियां मौजूद नहीं हैं। प्रबंधन और यूनियन दोनों पक्षों को नैतिकता का पालन करते हुए संरचनात्मक और संगठित तरीके से जीवन और बाजार की वास्तविकता को समझना होगा। कार्यस्थल पर लोगों के मानसिक परिसीमा को ध्यानपूर्वक और सहृदयता से सुनते हुए दूर किया जा सकता है। सही काम के लिए सही जगह पर सही व्यक्ति का चुनाव और इस्तेमाल की नीति सबसे अच्छी है। नैतिकता के वातावरण में ही सहभागिता की प्रबल भावना पनप सकती है और उद्योग के बाजार को दीर्घकाल तक अक्षुण रख सकता है। प्रबंधन विशेषज्ञ पीटर ड्रकर के अनुसार 21वीं सदी में केवल वही प्रबंधक परिणाम दे सकते हैं जो मूल्य आधारित पद्धति का व्यवहार करेंगे। किसी भी समस्या का एक ही हल नहीं होता, सभी विकल्पों को तोलना होगा। ऐसा वही प्रबंधन कर सकता है जिसके सोच में मूल्य आधारित लचीलापन हो। प्रबंधक का लचीलापन इतनी ऊर्जा पैदा करता है कि वह अपने आसपास के कर्मचारियों को भी अपने घेरे में ले लेता है और परिणाम स्वरूप औसत ऊर्जा का स्तर ऊपर हो जाता है। टीम में नवजीवन का संचार शुरू हो जाता है और बाहर वालों को सुखद आनंद एवं स्फुरन का एहसास होता है। यह संभव नहीं है कि उद्योग के सभी कर्मचारियों में तत्काल नैतिकता लाई जा सके, लेकिन कार्यस्थल के माहौल में उचित बदलाव लाकर कार्य संस्कृति में नैतिकता लाई जा सकती है। कार्यस्थल को अन्य जगहों के मुकाबले अधिक आकर्षक दिखना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को तनाव का बोध नहीं हो और वे काम के समय आनंद का अनुभव करें। रोजमर्रा के कामों में छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करना आत्मविश्वास को बढ़ाने की शुरुआत होगी। उद्योग में कार्यस्थल का वातावरण प्रबंधन की तरफ से ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए कि नैतिकता को बल मिले और कर्मचारियों की सृजनात्मकता, कुछ नया करने की उसकी प्रतिभा को बल मिले। कर्मचारियों की पहचान उसके ओहदे के बजाय उसकी गुणवत्ता से होनी चाहिए। हमारे देश में हाथों से किए जाने वाले श्रम के कार्य को निम्न समझे जाने की मानसिकता सी बन गई है। लोगों में पारदर्शिता के महत्व को समझना होगा। पारदर्शिता तभी संभव है जबकि व्यक्ति में नैतिकता हो और कुछ भी छुपाने की मानसिकता नहीं हो। काम को अपना काम मानना और आवश्यकता पड़ने पर यह मालूम होना कि मार्गदर्शन के लिए हम किससे संपर्क करें। आज हम भारतीयों में देशभक्ति की भावना में कमी और गिरते नैतिक मूल्य सचमुच चिंता के विषय हैं। हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वातावरण के कारण दोहरी मानसिकता के शिकार हो गए हैं। एक तरफ पारिवारिक मान्यताओं को भी कायम रखना चाहते हैं, दूसरी ओर इतने उदासीन हो गए हैं कि नैतिकता के अभाव के कारण शर्मिंदा भी नहीं है। आत्मसंतुष्टि और नैतिक मूल्यों के अभाव के कारण कर्मचारी अनजाने ही गलत कामों की ओर बढ़ जाते हैं। उद्योगों में कर्मचारियों को ठीक से समझना ही प्रबंधन है। कर्मचारी जिस संस्कृति में बड़े हुए हैं उसे समझकर ऐसी शैली विकसित करना ही प्रबंधन है जो नैतिकता के मानदंडों पर उद्योग तथा कर्मचारियों के लिए उपयुक्त हो। यही एकमात्र उपाय बचता है जिससे उद्योग की उत्पादकता, बाजार में उसके उत्पाद की विश्वसनीयता तथा उसकी साख अधिक से अधिक समय तक कायम रखी जा सकती है और एक उत्पादक कार्य संस्कृति को बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।
0: वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य एवं नैतिकता की स्थिति, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे ये पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ताकार थे किशोर कुमार।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए तक की और शहरी क्षेत्रों में 2.0 में नए आवासों को मंजूरी दी जा रही है। श्रोताओं, महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि देश के अंदर कई ऐसे परिवार हैं जो अपने लिए पक्का आवास नहीं बनवा पाते। सरकार इस योजना के तहत उन सभी परिवारों को आर्थिक सहायता देकर पक्का आवास बनवाएगी। ये योजना शहरी और ग्रामीण लोगों को घर खरीदने और सुरक्षित रहने में मदद करती है। लाभार्थियों को इस योजना के तहत अपना एक स्थायी आवास मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के कई सारे लाभ और विशेषताएं हैं। इस योजना के द्वारा लाभार्थियों को घर बनवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1.20 लाख से 1.30 लाख तक और शहरी क्षेत्रों में 2.50 लाख तक की आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। जिन परिवारों के पास पक्का घर नहीं है, वे इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास इन दस्तावेजों का होना जरूरी है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने के लिए आपको पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन पहले मंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज पर एक अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प दिखेगा, जहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आवास योजना का एक पेज खुलेगा। उस पेज में आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, जिसको आपको सावधानी पूर्वक भरना है। उसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर देना है। श्रोताओं, फिर आपको नीचे एक सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। इस प्रकार आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपना आवेदन घर बैठे कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।
2: अरे, हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
2: अरे, हमार बाबू।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये था महान फिल्म का गीत। गीत अनजान का था और संगीत था राहुल देव बर्मन का। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। दीजिए अनुमति रश्मि तिवारी को नमस्कार।

कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों का प्रसारण।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉ. जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास

0: प्रेम सिंह पूर्ति और साथियों के स्वर में गाए हो लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। निमेश को दीजिए अनुमति।
1: झारखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने ही वाले हैं और अब आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। नवदिल्ल्यां भारत इण्डोनेशिया देशयोः संयुक्तायोगस्य उपवेशनं सम्पन्नं। द्वैपाक्षिकवार्तायाम् उभौ पक्षौ सामरिक सहभागित्वं सुदृढीकरणाय सहमतौ अभवताम्। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अन्ताराष्ट्रिय सीमायां वित्तीय सम्पत्ति व्यवहारेषु सूक्ष्म निरीक्षणाय आहूतम्। CBSE अद्य मध्यरात्रौ द्वादशी कक्षायाः पुनर्मूल्याङ्कनाय आवेदनस्य वेब फलकं समापयिष्यति। राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमारः कोच्चिनगरे दिवंगतः। आगामी द्वित्रिदिनेषु सम्पूर्णे देशे व्यापक वृष्टि भविष्यति इति IMD इत्यनेन पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति। अपि च भारतीय मल्लक्रीडकाः मंगोलियायाः उलान बटार ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्णपदके द्वे कांस्यपदके च विजितवन्तः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत इण्डोनेशिया देशयोः संयुक्तायोगस्य उपवेशनम् अद्य नवदिल्लीनगरे सम्पन्नम्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः तथा तस्य इण्डोनेशिया देशीयः समकक्षीयः सुगियोनो इत्येषः च उपवेशनस्यास्य सहाध्यक्षतां कृतवन्तौ। सामाजिक माध्यमे प्रकाशिते सन्देशे डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् विगतेषु वर्षेषु उभयो देशयो मध्ये व्यापक रणनीतिक सहभागिता सुदृढा अभवत्। तेनोक्तं यत् राजनैतिक रक्षा सुरक्षा सामुद्रिक नौवहन वाणिज्य वित्तीय प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य औषध निर्माण उर्वरक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रेषु तथा पर्यटन शिक्षण एवं सांस्कृतिक सहयोगादिषु विषयेषु महत्वपूर्णा चर्चा अभवत्। उभौ नेतारौ क्षेत्रीय घटनाक्रमान् बहुपक्षीय समन्वयस्य संवर्धनं तथा भारत आसियान सम्बन्धानां सुदृढीकरणे अपि स्वविचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। इतः पूर्वम् उद्घाटनभाषणे डॉ. जयशंकर अवदत् यत् उभयो देशयो मध्ये संयुक्तायोगस्य उपवेशनमिदं चतुर्वर्षानन्तरम् आयोजितम् अस्ति। एतत् स्वीकरणीयं यत् अस्मिन् समये द्विपक्षीय सम्बन्धेषु महत्वपूर्णा प्रगतिः अभवत्। तेनाग्रे उक्तं यत् गतवर्षे भारत इण्डोनेशिया देशौ उभौ राजनैतिक सम्बन्धानां स्थापनायाः 75 वर्षाणां पूर्तेः उत्सवं सम्यक् आचरितवन्तौ। गृहमंत्री अमितशाह अंतरराष्ट्रीय सीमासु वित्तीय व्यवहाराणां भवन निर्माणस्य तथा संपत्तीनां च क्रयणस्य विक्रयणस्य च विषये कठोर पर्यवेक्षणस्य पालनम् आहूतवान्। एषः निर्देशः तेन BSF त्रिपुरा सीमा मुख्यालये पूर्वोत्तर राज्यस्य सीमावर्ती क्षेत्राणां संबंधे आयोजितायां सभायां प्रदत्तः। गृहमंत्री गत 5 वर्षाणां भूमिलेखानां परीक्षणं कारयितुमपि निर्दिष्टवान्। शीर्षाः उक्तवान् यत् सीमावर्ती जनपदेषु वित्तीयानुशासनस्य सुनिश्चितीकरणं राज्यसर्वकाराणां दायित्वमपि अस्ति। उपवेशने अस्य विषयस्य उपरि विशेषतया बलं दत्तं यत् नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनम् अन्ताराष्ट्रियसीमासु उच्चतमस्तरस्य सुरक्षां सुनिश्चेतुं दृढसङ्कल्पितम्।

संस्कृत में समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले मेरे प्यारे किसान भाई बहनों, साथ ही कार्यक्रम सुन रहे सभी सुधी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आज के ज्ञानवर्धक अंक के साथ हूँ मैं आपका रेडियो मित्र अनिमेश कुमार बक्सी।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: कृषक मित्रों, आज के अंक में झारखंड में पाई जाने वाली मछलियों की किस्में और उत्पादन की सही विधि विषय पर सुनिएगा भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय गुमला के सहायक प्राध्यापक और कनिष्ठ वैज्ञानिक बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची के डॉक्टर आनंद वैष्णव। लोकगीत के साथ सुनिएगा जरूरी सूचनाएं और जानकारियां। लेकिन इन सबसे पहले बातें कर लेते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और विकसित भारत जी राम जी योजना से होगी जल सुरक्षा की गारंटी विषय पर। किसान भाइयों और बहनों, आज 7 जून है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इस साल का संदेश है खेत से थाली तक सुरक्षा। सोचिए, हम दिन भर मेहनत करके अनाज, सब्जी, दूध उगाते हैं, पर अगर वही खाना बीमार कर दे तो मेहनत का क्या फायदा। WHO कहते हैं कि हर साल 60 करोड़ लोग दूषित भोजन से बीमार पड़ते हैं। खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ भूख नहीं, इसका मतलब है कीटनाशक वाली सब्जी, मिलावटी दूध, फफूंद लगा अनाज। बरसात में ये खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। तो बचाव कैसे करें, सिर्फ 5 बातें याद रखिए। पहली, खेत में फसल काटने से 3 दिन पहले कीटनाशक का छिड़काव बंद कर दीजिए, इसे सुरक्षा अवधि कहते हैं। गोबर की खाद 6 महीने पुरानी इस्तेमाल कीजिए। दूसरी, बाजार में प्लास्टिक की थैली की जगह टोकरी लाइए, प्लास्टिक का केमिकल सब्जी में घुल जाता है। तीसरा, रसोई में खाना बनाने से पहले हाथ धोइए, कच्चा और पक्का खाना अलग रखिए, खाना हमेशा ढककर और अच्छी तरह उबालकर पकाइए। चौथी, दूध के लिए कच्चा दूध भूलकर भी मत पीजिए, हमेशा उसे उबालकर ही पीजिए।

होती है। इससे गाय भैंस की ब्रुसेलोसिस बीमारी इंसान में नहीं आती है। पांचवी, शक हो तो अगर सब्जी में कीड़ा या दूध में मिलावट का शक है तो डरिए मत, सीधे डायल कीजिए किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-180-1551। ये टोल फ्री है, सुबह 6 से रात 10 बजे तक आपको एक्सपर्ट जो है वो सलाह देंगे। याद रखिए, सुरक्षित खाना, स्वस्थ परिवार। किसान अगर खेत में ध्यान दे और हम रसोई में, तो झारखंड जरूर स्वस्थ बनेगा। आज संकल्प ले, ना मिलावटी खाना खाएंगे ना खिलाएंगे, क्योंकि सुरक्षित भोजन ही सच्ची उन्नति है। पूरी आकाशवाणी परिवार की ओर से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुभकामनाएं तथा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और आइए अब बातें करते हैं विकसित भारत जी राम जी योजना से होगी जल सुरक्षा गारंटी, इस विषय पर। किसान भाइयों और बहनों, विकसित भारत का सबसे जरूरी मिशन है जल जीवन मिशन। गाँव में इसे लोग जी राम जी योजना से जोड़कर देखते हैं, मतलब हर घर को राम जैसा सुख देने वाली जल योजना। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित भारत की पहली शर्त है हर घर में साफ सुरक्षित पीने का जल, क्योंकि जल है तो जीवन है, खेती है, स्वास्थ्य है। जल जीवन मिशन क्या है, आइए अब इसकी बातें करते हैं। 2019 में शुरू हुआ ये मिशन एक ही वादा लेकर आया, हर घर जल से नल, नल से जल। लक्ष्य था 2024 तक हर ग्रामीण घर में रोज 55 लीटर साफ पानी पहुंचाना। झारखंड में भी ये काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पहले महिलाएं 2-3 किलोमीटर चलकर डेली कलश में पानी लाती थी। कुआं हैंडपंप का पानी पीला और बदबूदार होता था। अब घर के आंगन में नल लग रहा है, बटन दबाओ और साफ पानी लो, यही है जल सुरक्षा की गारंटी। किसान और गाँव को क्या फायदा होगा, तो ये सिर्फ पीने का पानी नहीं है, इसके तीन बड़े फायदे हैं। पहला है स्वास्थ्य की गारंटी। दूषित पानी से पीलिया, डायरिया, टाइफाइड होता है। हर साल हजारों बच्चे बीमार पड़ते हैं। नल का पानी फिल्टर होकर आता है, टेस्टिंग लैब में जांच होती है, तो बीमारी घटी तो डॉक्टर का खर्चा भी बचा। दूसरा, समय और मेहनत की बचत। पहले बहने 2 घंटे पानी भरने में लगाती थी, अब वो समय पढ़ाई, सिलाई, बकरी पालन में लग रहा है। घर की औरतें जल सहेली बनकर नल की देखरेख कर रही हैं। मिशन लाइफ का सिद्धांत भी तो यही है, पानी बचाओ। और तीसरा, खेती को बल। घर में पीने का पानी पक्का हुआ तो किसान कुएं, बोरिंग का पानी खेत में लगा पा रहे हैं, और सब्जी फूल की खेती भी बढ़ रही है। विकसित भारत तभी बनेगा जब गांव की आय बढ़ेगी। आपकी जिम्मेदारी क्या है, इसको भी जान लेते हैं। सरकार नल लगा रही है, पर पानी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तीन काम जरूर करें, जल व्यर्थ ना बहाए। बाल्टी भरते ही नल बंद कर दें, बूंद बूंद से सागर भरता है, स्रोत बचाएं। गांव का तालाब, कुआं, चापाकल के आसपास कचरा ना फेंकें। पेड़ लगाएं, पेड़ होगा तो भूजल रिचार्ज होगा। जल समिति से जुड़े, हर गांव में पानी समिति बनी है, उसमें 50% महिलाएं हैं। मेंटेनेंस के लिए 10 रुपया महीना लगता है, नल खराब हो तो उस समिति को भी बता सकते हैं। साथियों, विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब गांव का हर बच्चा स्वस्थ होगा, हर महिला सशक्त होगी, और ये तभी संभव है जब हर घर नल, हर घर जल होगा। जल जीवन मिशन सिर्फ योजना नहीं है, ये गारंटी है आने वाली पीढ़ी को जल की कमी नहीं होगी। आइए हम सब मिलकर प्रण ले, जल बचाएंगे, भारत बनाएंगे, विकसित भारत, जल सुरक्षित भारत। मित्रों, यह थी जानकारी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और विकसित भारत जी राम जी योजना से सच होती जल सुरक्षा की गारंटी के बारे में। और आइए आपको झारखंड में पाई जाने वाली मछलियों की किस्में और उत्पादन की सही विधि विषय पर बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित भेंटवार्ता सुनवाते हैं। भेंटवार्ताकार हैं मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय गुमला और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची के कनिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद वैष्णव, और इनसे बातचीत की है आपके रेडियो मित्र अनिमेश कुमार बक्सी ने। आइए सुनते हैं यह महत्वपूर्ण भेंटवार्ता।

0: में क्या क्या होती हैं और उनका उत्पादन विधि क्या होता है। इन सभी बातों पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद वैष्णव जी, जो गुमला के सहायक प्राध्यापक हैं और साथ ही कनीय वैज्ञानिक भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से हम मछली उत्पादन कर सकते हैं और झारखंड में कौन कौन सी मछलियां जो हैं वो उपजाई जाती हैं। डॉक्टर आनंद वैष्णव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: सबसे पहले तो झारखंड के सभी किसान बंधुओं को मेरा जोहार, नमस्कार।
0: क्या कुछ कहना चाहेंगे सर मछलियों के बारे में?
1: धन्यवाद सभी को। आज मैं थोड़ा सा झारखंड में पाई जाने वाली प्रमुख मछली की प्रजातियां और साथ ही उनके उत्पादन की विधि, जिसमें कुछ सामान्य विधियां हैं और कुछ आधुनिक विधियां भी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा, उनको जानकारी देना चाहूंगा। अगर हम सबसे पहले मछली पालन की बात करते हैं, तो ज्यादातर जो किसान भाई हैं जो मछली पालन के बारे में नहीं जानते हैं, लोगों को सामान्यतः ये भ्रम होता है कि मछली पालन जो है वो मछली हम तालाबों में डाल देते हैं, मछली के बच्चे, और वो वृद्धि कर जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे एक इंसान को या किसी भी हम दूसरे पशु जो पालते हैं, है ना, गाय बकरी भैंस, ऐसे उनको चारा खिलाना पड़ता है, उसी हिसाब से मछली को भी अगर हम उत्तम चारा उनको प्रदान करें तो उनका जो विकास है, उनकी जो वृद्धि है, वो बहुत जल्दी वृद्धि करते हैं, उनके वजन में बहुत जल्दी वृद्धि होती है। और जिस प्रकार से हमको या किसी भी पशु को एक अच्छे उत्तम स्वास्थ्य के लिए अच्छे परिवेश की आवश्यकता होती है, वैसे ही मछलियों को भी एक अच्छे परिवेश की आवश्यकता होती है। मछलियाँ पानी में रहती है, इसलिए पानी की अच्छी गुणवत्ता, साथ ही जो हमारा तालाब है वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि जैसे कि भी बारिश का सीजन आने वाला है, तो बारिश के सीजन में ही मछली का बीज उत्पादन किया जाता है और मछली के बच्चे जो है तालाब में संचित किए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें, जैसे हम खेतों में खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, धान के खेतों की तैयारी करते हैं, उसमें जो खरपतवार होते हैं उनको हटाते हैं वहां से, उसमें थोड़ा सा खाद या उर्वरक देते हैं बुआई करने से पहले। तो उसी प्रकार से मछली पालन करने से पहले जो हमारे तालाब होते हैं, तो तालाब की हमें साफ सफाई करनी चाहिए और उसमें थोड़ा उर्वरक, उसमें थोड़ा खाद देना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम तालाब को सूखा करते हैं, तालाब का जो पानी होता है उसको पूर्ण रूप से हटा देते हैं। हटाने के बाद उसमें जो है हम हल चलाते हैं, जिससे हम आजकल ट्रैक्टर का भी यूज कर सकते हैं, या किसान बंधु चाहे तो वो अगर उनका छोटा तालाब है तो खुद से भी कर सकते हैं, फावड़े वगैरह का यूज करके, या फिर ट्रैक्टर वगैरह के हल का उपयोग करके कर सकते हैं। तो पहले करके हल करके उसे कम से कम एक हफ्ते के लिए छोड़ देना चाहिए। तो इस समय क्या है, कड़ी धूप होती है, तो जो भी खरपतवार वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं उससे। हाँ, उसके बाद उसमें थोड़ा पानी भरने से पहले उसमें जो गोबर का खाद होता है, जैसे सामान्यतः जो गांव में मिल जाता है गोबर का खाद, या हम मुर्गी का भी खाद यूज कर सकते हैं, बकरी का भी खाद यूज कर सकते हैं, सूअर का भी जो खाद है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जो खाद है प्राकृतिक रूप से जो हमें उपलब्ध होते हैं, जो ऑर्गेनिक होते हैं, इन सबका उपयोग करना बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे लगभग लगभग 5000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है बराबर तालाब में फैला के उसके बाद जो है इसमें जो है हल चला देना चाहिए।
0: अच्छा।
1: हाँ, उसके बाद कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर, या अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो एक बीता ऐसे जो बोलते हैं, या आधा फीट बोल सकते हैं, उतना हमें पानी भर के कम 10 से 15 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए।
0: अच्छा।
1: तो उससे क्या होते हैं, जैसे कि मछलियों का प्राकृतिक भोजन क्या होता है, मछलियों का प्राकृतिक भोजन होता है जो पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव पानी में दो प्रकार से मिलते हैं, एक तो होता है पौधे जो पानी में सूक्ष्म पौधे होते हैं, और दूसरे होते हैं सूक्ष्म जीव जो पानी में रहते हैं। तो जब हम गोबर खाद देते हैं तो ये फर्टिलाइजर है, खाद जो है ये क्या करता है, भूमि की उर्वरा शक्ति जो है तालाब की उसको बढ़ा देता है, जिससे उसमें छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पौधे जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो पौधे जो है उत्पादित हो जाते हैं उसमें बहुत अच्छे से।
0: अच्छा।
1: और वही जो पौधे हैं वो मछली का चारा होते हैं प्राकृतिक रूप से। तो ये हो जाने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, फिर 15 दिनों के बाद जो है उसमें पानी को जो है कम से कम 1.5 से 2 मीटर या अधिकतम से अधिकतम 3 मीटर तक हम उसमें क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। ये सबसे सामान्य विधि है तालाब में मछली पालन करने की। और इसमें जो है हम फिर मछली के बच्चे, जिसे हम अंगुलिका भी कहते हैं, तो ये कम से कम 3 से 4 इंच इसका जो साइज होता है उसको जो है हम लोग उसमें स्टॉक करते हैं। तो इसके लिए हम 5,000 प्रति हेक्टेयर, 5,000 मछली के जो बच्चे हैं अंगुलिका है उसको जो है हम प्रति हेक्टेयर तालाब में जो है उसका हम स्टॉक करते हैं, उसको संचयित करते हैं। और संचयित करने के बाद भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारा

0: जो पानी का कलर है तालाब का वो बिल्कुल हल्का हरा होना चाहिए। अगर वो हल्का हरा है तो ये संकेत करता है कि आपके तालाब में जो प्राकृतिक पौधे पाए जाते हैं, सूक्ष्म पौधे जो मछलियों के भोजन हैं, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। और अगर तालाब का जो पानी का कलर है वो थोड़ा सा अगर भूरा जैसा कलर है तो भी वह बहुत उत्तम है, क्योंकि उस दशा में उसमें जो छोटे छोटे जो कीड़े पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो पौधे नहीं होते, वो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको मछलियां खाती हैं, वो अच्छे जो है वृद्धि करते हैं। तो इसकी भी हम मछलियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, कुछ मछलियां शाकाहारी होती हैं, कुछ मछलियां जो है मांसाहारी होती हैं, जो सिर्फ छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव कीड़े हैं उनको खाते हैं, कुछ मछलियां सिर्फ पौधों को खाती हैं, और कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो कीड़ों को भी खाते हैं और छोटे छोटे पौधों को भी खाते हैं। झारखंड में सामान्यतः जो है सबसे ज्यादा जो प्रचलित है पूरे भारत में भी और पूरे झारखंड में भी, तीन प्रकार की मछलियां हैं जिसे हम इंडियन मेजर कार्प कहते हैं, जिसमें रोहू, कतला और मृगल करके तीन मछलियां आती हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी प्रजाति की मछलियां भी हैं जो पर्याप्त मात्रा में जो है झारखंड में भी और पूरे भारत में उपलब्ध है, जैसे कि ग्रास कार्प हो गया, कामन कार्प हो गया, या सिल्वर कार्प हो गया, या जिसे हम ब्लैक कार्प कहते हैं, बिग हेड कार्प कहते हैं, ये विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं। तो तालाब में सामान्यता है जो है मछलियों के लिए अलग अलग, ये मछलियां जो है अलग अलग स्तर में भी रहती हैं। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो नीचे में रहती हैं बिल्कुल तालाब के, कुछ होते हैं जो उसके मध्य में होती हैं, और कुछ मछलियां बिल्कुल ऊपर में रहती हैं। तो हम क्या करते हैं कि तालाब में पूरा जो अपना तालाब का एरिया है उसको हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके, उसके लिए सामान्यतः हम तीन प्रकार की मछलियां जो होती हैं, रोहू, कटला और मृगल, उनको हम जो है उपयोग में लाते हैं, उनको हम संचयित करते हैं। तो इसमें जो मृगल मछली होती है वो बिल्कुल तालाब के निचले स्तर में रहती है, और जो रोहू मछली होती है वो तालाब के मध्य स्तर में रहती है, और जो कतला मछली होती है वो तालाब के ऊपरी हिस्से में रहती है। तो इससे क्या होता है, तालाब के हर एक कोने का जितना भी उसमें जगह है सबका जो है बराबर अच्छे से उपयोग हो जाता है। इस कंडीशन में हम रखते हैं इस तरीके से तो हम ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, जगह का ज्यादा उपयोग कर पाएंगे। तो ये वाली जो फार्मिंग होती है इसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। तो इस मिश्रित खेती में सवाल ये बनता है कि हम कितना कितना इन मछलियों को डालें, कौन सी मछली को किस अनुपात में रखें। तो इसमें जैसे कि हम क्या करते हैं, 30-30% जो है कतला मछली जो ऊपर में रहती है उसको, 30% रोहू मछली जो मध्य स्तर में रहती है, और उसके बाद ये दोनों मिला के 60% होगा, और 40% जो बचा हुआ है उसको जो है मृगल के लिए छोड़ देते हैं। 40% जो मछलियों का संचयन हम करते हैं मृगल को। तो इस प्रकार इनका जो है रेशियो तैयार करते हैं। जैसे अगर हम 5,000 की बात करें तो 5,000 में 2,000 कतला, 2,000 आपका रोहू जो मध्य भाग में रहती है, और 1,000 जो है मृगल जो मछली है उसको जो है संचयित तालाब में करना चाहिए। उसके बाद आता है अगर हम मछली को तालाब में संचयित तो कर दिए, उसके बाद भी हमें उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो मछलियों में भी बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं, कुछ कीड़े लग जाते हैं, कुछ फंगस लग जाते हैं उनमें, या कुछ अलग प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, मौसमी जो बीमारियां होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तालाब का जो पानी का जो उसका जो क्वालिटी है उसको बहुत अच्छा रखना है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसका समय समय पे हमें चेक करते रहना चाहिए। तो इसके लिए सबसे जो सामान्य विधि है पानी की गुणवत्ता चेक करना है वो है पीएच। पीएच जो होता है, पीएच मतलब कितना अम्लीय है या क्षारी तो नहीं है, इसको हम देखते हैं। ज्यादा क्षारी भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा अम्लीय भी नहीं होना चाहिए। तो जो पीएच हम कहते हैं कि 7 जो नंबर आता है पीएच का वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल पीएच है। जो पानी हम भी पीते हैं, जो फिल्टर पानी पीते हैं या बहुत अच्छा मीठा पानी जो पीते हैं, वो उसका भी पीएच लगभग 6.5 से 7.5 के बीच में ही होता है। तो मछलियों के लिए भी वही पानी जो है सबसे उत्तम होता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि पानी का जो कलर है उसको भी हम देख के पता लगा सकते हैं, साथ ही मिट्टी का परीक्षण करना भी बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तालाब के विभिन्न कोनों से, एक बीच से, चारों कोनों से ऐसे मिट्टी लेके उसको हम थोड़ा सा उसका सुगंध लेके देखते हैं कि कहीं मिट्टी में से कुछ बदबू तो नहीं आ रही है करके, कुछ दुर्गंध तो नहीं आ रहा है करके। अगर हमारी मिट्टी सामान्य है तो उसमें बिल्कुल दुर्गंध नहीं आएगा। अगर उसमें थोड़ा दुर्गंध आ रहा है तो हम गोबर का घोल बना के उसे तालाब में छिड़काव कर सकते हैं, अथवा चूने का उपयोग करते हैं। अगर हमारी मिट्टी जो है ज्यादा अम्ली हो गई है, मतलब उसमें ज्यादा खट्टापन आ गया है, अम्ली हो गया है, तो ये मछलियों के लिए अच्छा नहीं होता है, स्वास्थ्य के लिए उनको बीमार करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, चूने का उपयोग करते हैं। चूने का घोल बना के हम जो है तालाब में छिड़काव कर देते हैं, तो उससे जो उसकी है अम्लीयता जो होती है वो चली जाती है।
1: अच्छा
0: हाँ, इसके साथ ही हम कुछ जिसे हम एकीकृत मछली पालन भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिसको बोलते हैं, ये दूसरी विधि है मछली पालन की और ये भी सबसे उत्तम विधियों में से एक है।
1: अच्छा
0: इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हम मछली का अकेले पालन नहीं करते, जैसे कि कोई किसान भाई बंधु है जो गाय का पालन कर रहे हैं, या पहले से वो मुर्गी का पालन कर रहे हैं, सुअर का पालन कर रहे हैं, बकरी का पालन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ में अपने खेती में जो है मछली का भी पालन कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे झारखंड के बंधु जो है किसान बंधु धान की खेती करते हैं, तो धान की खेती में क्या होता है, धान की खेती 3 से 4 महीने लगभग लगभग धान की खेती की जाती है, जो फसल है वो 4 महीने में पक के तैयार हो जाता है, तो 3 महीने तक धान की खेती में पानी भर के रखा जाता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मछलियों के तैयार कर सकते हैं उसमें भी, तो उसमें मछली के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम जब धान थोड़ा बड़ा हो जाए उसमें पानी भरते तो उसमें मछलियों के बच्चे हम संचित कर देते हैं, तो धान जो जैसे जैसे धान भी बढ़ता है साथ में मछलियां भी बड़ी होती हैं। तो जब धान काटने के समय से थोड़े पहले, 1 महीने पहले या 20 दिन के पहले जो है, जब हम थोड़ा पानी उसमें बचा होता है तो धान में क्या करते हैं, एक नाली निकाल देते हैं और उसमें एक मुहाना छोटा सा गड्ढा जैसा तैयार कर देते हैं। तो धान की कटाई से पहले हम क्या करते हैं, उसमें जो भी खेत में पानी होता है उसकी निकासी कर देते हैं, तो जब निकासी करते हैं तो वहीं पे जाल वगैरह लगा के हम मछलियों को भी पकड़ सकते हैं। दूसरा होता है जैसे कि सबसे सामान्यतः मुर्गी का जो हमारे किसान बंधु पालन करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो मुर्गियां होती हैं लगभग लगभग जैसे 400-500 मुर्गियां हैं, 400 से लेकर 500 जो मुर्गियां होती हैं वो 1 हेक्टेयर तालाब में अगर हम मछली पालन करते हैं तो उसके लिए इतनी मुर्गियां पर्याप्त हैं। तो इसमें क्या करते हैं, मुर्गियों का जो अपशिष्ट होता है, जो उनका मल होता है, उसको जो है हम तालाब में उसकी निकासी कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो एक खाद के रूप में काम करता है और जो प्राकृतिक भोजन होता है मछलियों का, जैसे कि जिसको हम सामान्य हम लोग वैज्ञानिक भाषा में जिसको हम प्लैंकटन कहते हैं या प्लवक कहते हैं हिंदी में, तो वो छोटे छोटे से सूक्ष्म जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको मछलियां खाती हैं, उनकी ये वृद्धि करते हैं, मतलब ये उर्वरक के जैसे काम करते हैं तालाब में।
1: तो किसान भाई बहनों, ये थे डॉक्टर आनंद वैष्णव जी, जो कि गुमला में सहायक प्राध्यापक हैं और कनीय वैज्ञानिक भी हैं मत्स्य पालन के क्षेत्र में। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने झारखंड में पाई जाने वाली मछलियों के बारे में भी बताया और उनको क्या क्या चारा दिया जाता है और कैसे वो उनका ग्रोथ हो सकता है, इन सभी विषयों के बारे में बहुत ही विस्तार से इन्होंने जानकारियों को साझा किया। डॉक्टर आनंद वैष्णव जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने जो है मुझसे संपर्क किया और मुझे मौका दिया कि मैं किसान भाइयों के लिए कुछ उनको जानकारी प्रदान कर सकूं, उनको कुछ बोल सकूं, उनका कुछ सहायता कर सकूं। जी धन्यवाद अनिमेश जी।
2: किसान भाई बहनों, अभी आप झारखंड में पाई जाने वाली मछलियों की किस्में और उत्पादन की सही विधि विषय पर डॉक्टर आनंद वैष्णव जी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण सुन रहे थे। बाह्य ध्वनि अंकन पर टेलीफोनिक आधारित थी यह भेंटवार्ता। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
5: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर।
4: हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
6: आरबीआई कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: संदेश के प्रसारण के बाद आइए सुनते हैं नीलांबर चौधरी और साथियों के स्वर में मैथिली लोकगीत।

कृषि जगत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:55 हो चुके हैं। अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी रांची से, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार का प्रसारण ठीक शाम 7 बजे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका?
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना,
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। भाजपा का दावा, विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का राज्य के विभिन्न जगहों पर हुआ स्वागत, कहा भाजपा के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आएगी झारखंड की जमीन। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का किया उद्घाटन। हर नागरिक से की राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान का हिस्सा बनने की अपील। 12 से 15 जून के बीच राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की जताई आशंका। और झारखंड के युवा पहलवान अनूप कुमार ने उत्तर प्रदेश में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बाघेल ने बताया कि आज शाम मुख्यमंत्री आवास में सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है।
10: हाँ हाँ, मुख्यमंत्री तो हमारे सबके नेता हैं भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा को नेता तो हैं, लेकिन गठबंधन के भी नेता हैं हमें, तो सभी हमारे जितने 56 विधायक हैं सबके बैठक बुलाए हैं, शाम को हम लोग भी उपस्थित रहेंगे। जब सारे विधायक रहेंगे, सारे गठबंधन के नेता लोग रहेंगे, क्लियर है दोनों सीटें हम जीतेंगे।
7: इधर भाजपा के नेता भानु प्रताप शाही ने दावा किया कि राज्यसभा की दूसरी सीट उनकी पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं।
11: मंत्री संपर्क में, आप विधायक की बात बोलते हैं, दो तीन को मंत्री का नाम हम बता देंगे जो हम लोगों से संपर्क में। तो हेमंत जी को भी सलाह देता हूँ मित्रवत कि भाई बच जाओ, नहीं तो ये काला नाग ऐसा डसेगा ना कि कहीं के लायक नहीं रहोगे। लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि झारखंड के चारों तरफ कमल खिल गया है, झारखंड में कमल खिलाना बाकी।
7: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा के लिए झारखंड की जमीन निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य लेकर आएगी। पत्रकारों से बातचीत में आज श्री नवीन ने दोहराया कि भाजपा ने ही झारखंड राज्य गठन के लिए संघर्ष किया और वही इसे संवारेगी भी।
12: रांची मेरे लिए दूसरा घर है और भाजपा के इस गढ़ में फिर से कमल कैसे उसी स्वरूप में खिले, उसके लिए मुझे संकल्पित होना था। कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उत्साह के साथ हम लोग के साथ संवाद किया, मैं मानता हूं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें फिर से उसी प्रकार से हम मजबूत करने में सफल होंगे।
7: इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा इस दौरे से कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं।
13: राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड के प्रवास में है और निश्चित रूप से संगठन को, कार्यकर्ताओं को और युवा कार्यकर्ताओं को काफी प्रेरणा मिल रहा है, काफी उत्साहित है कार्यकर्ता, और आने वाले दिनों में उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से झारखंड के भविष्य के प्रति अपना योगदान और अच्छे ढंग से हो सकेगा।
7: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ

0: मतदाता सूची के सत्यापन में जुटे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि बीएलओ के घर आने पर सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। हजारीबाग स्थित विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए एमबीए और बीबीए पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एमबीए के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तथा बीबीए के लिए 5 जुलाई निर्धारित की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि इससे गरीबों का जीवन प्रभावित होगा।
2: कब बढ़ जाएगा पेट्रोल गैस का दाम, एलपीजी का दाम, जबकि क्रूड ऑयल नीचे की ओर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरी हैं, उसके बावजूद बढ़ोतरी है, तो पूछिए जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, गरीबों का खून चूसने पर आमादा है, दो चार उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सरकार चला रहे हैं, उनका कर्ज माफ कर रहे हैं।
0: इधर भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले अभी भी भारत में घरेलू गैस काफी कम कीमत पर मिल रही है।
3: उनको एक एलपीजी घरेलू उपभोक्ता को बेचने में 870 रुपए प्रति सिलेंडर का नुकसान हो रहा है, तो एक छोटी सी कोशिश है इस भरपाई को करने की, क्योंकि इकोनॉमी पे प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अगल बगल के देशों में, महाशक्तियों में भी जहां अभी गैस के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, हमने बहुत मामूली बढ़ोतरी की है और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थितियां बेहतर होंगी, हम ये जो है प्राइसेस जो है स्टेबलाइज हो जाएंगी।
0: खूंटी जिले के तोरपा से विधायक सुदीप गुड़िया ने आज एक समारोह में 7 एम्बुलेंस और 3 शव वाहनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। संभावना जताई जा रही है कि 12 से 15 जून के बीच राज्य में मानसून दस्तक दे सकता है। झारखंड के युवा पहलवान अनूप कुमार ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर-17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता के 45 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी के प्रशिक्षु अनूप ने सभी मुकाबले तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीतते हुए खिताब अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। भाजपा का दावा विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

0: नितिन नवीन का राज्य के विभिन्न जगहों पर हुआ स्वागत। कहा, भाजपा के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आएगी झारखंड की जमीन। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रांची के मोरहाबादी में संडेज ऑन साइकिल का किया उद्घाटन। हर नागरिक से की राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया अभियान का हिस्सा बनने की अपील। 12 से 15 जून के बीच राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावना। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की जताई आशंका। और झारखंड के युवा पहलवान अनूप कुमार ने उत्तर प्रदेश में आयोजित अंडर 17 सब जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: आरबीआई कहता है,
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: विश्व पर्यावरण सप्ताह 2026 के अवसर पर जमशेदपुर वन प्रमंडल एवं एलिफेंट प्रोजेक्ट के संयुक्त तत्वाधान में दो मुहानी नदी तट के क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में वन विभाग के अधिकारियों, वन कर्मियों, स्वयं सेवकों तथा स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर क्षेत्र की साफ सफाई में योगदान दिया। इस दौरान DFO सबाल अमंसारी ने लोगों से नदियों को स्वच्छ और पर्यावरण को संरक्षित रखने की अपील की।
2: विश्व पर्यावरण सप्ताह 2026 के अवसर पर हम लोग आज सफाई अभियान का कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग दो मुहाने से लेकर के डोबो पुल तक सफाई अभियान, जो सोनरेखा नदी के किनारे जितने भी प्लास्टिक वगैरह पड़े हुए हैं और जितने भी कचड़े पड़े हुए हैं सभी को उठाने का कार्य कर रहे हैं।
1: जमशेदपुर के GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 15वीं झारखंड स्टेट सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया। प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। प्रतियोगिता का आकर्षण दो बच्चों की मां सोनल मिश्रा रही, जिन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं में 4 पदक जीते। सोनल ने कहा कि बच्चों के साथ तैराकी शुरू करते समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें पदक भी मिलेगा।
3: 400 मीटर फ्री स्टाइल में मैं सेकंड पोजीशन लाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रही हूँ। बच्चे आते थे पुल में, इसीलिए मैंने भी तैरना शुरू कर दिया था। 1 घंटे बैठने से बेटर है कि मैं तैर लूँ। तब कभी सोचा नहीं कि यहाँ तक पहुँच जाऊंगी।
1: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्वी सिंहभूम के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के युवा मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को देश के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं।
4: मोदी गवर्नमेंट के 12 साल के कार्यकाल से मैं बहुत खुश हूं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से युवाओं के लिए स्किल इंडिया और मुद्रा लोन जैसे योजनाओं से लोगों को आगे बढ़ने का एक रास्ता खुल रहा है, जिससे हमारा देश और तेजी से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का जो मिशन है वो अच्छी तरह से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।
1: जमशेदपुर के सेंटर फॉर एक्सीलेंस में ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल और निशान के संयुक्त तत्वधान में आयोजित सप्ताह व्यापी थिएटर आर्ट एंड क्राफ्ट कार्यशाला 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कार्यशाला के दौरान तैयार किए गए कस्टम मास्क, स्टेज क्राफ्ट और अन्य कलात्मक सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
5: निशान संस्था और ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल मिलकर के एक 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसका विषय था जो नाटक के अंदर में आर्ट एंड क्राफ्ट का जो उपयोग होता है उसके बारे में।

0: अभिनेता को लोग देखते हैं, लेकिन उस अभिनेता के अभिनय को निखारने के लिए जो पीछे काम होता है बैक स्टेज में, उसके लिए वर्कशॉप था।
1: बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ग्रामीण किसानों को उनके आमों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन ने इस वर्ष भी झारखंड के आम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
2: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी रांची से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले में आजकल। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। शाम के 7:15 हो चुके हैं श्रोताओं, और अब प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

0: बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:45 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण।
1: कार्यक्रम हमारा पर्यावरण के सभी श्रोता दोस्तों को संतोषी का नमस्कार। स्वागत है आप सभी श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी भूमि की उर्वरता बनाए रखने के दो मुख्य प्राकृतिक स्रोत हैं, पेड़ पौधे और पशुधन। वृक्षों से झड़ी पत्तियां सड़कर और पशुधन का मल मूत्र मिलकर भूमि की स्वाभाविक उर्वरता की क्षमता बनाए रखते हैं। ऐसे में यदि जंगल कटते जाएंगे और पशुधन कम होता जाएगा तो भूमि की प्राकृतिक उर्वरता भी कम होती जाएगी। गांवों और शहरों में पक्षियों की चहचहाट के साथ जागना लोगों की दिनचर्या थी, लेकिन आज उनकी ध्वनि भी नहीं सुनाई देती है। इसी तरह गांवों में जब पहले कोई जीव जंतु मर जाते थे तो आसमान की उच्चतम ऊंचाइयों से उसे देखकर ना जाने कितने ही गिद्ध आ जाते थे और स्वच्छता अभियान में अपना योगदान देकर चले जाते थे। लेकिन अब ये गिद्ध विलुप्त होती हुई प्रजाति में आ गए हैं। हमने जानबूझकर प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है उसके गंभीर परिणाम हमें भोगने पड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी को हम बहुत कठिन समय छोड़कर जा रहे हैं। पर्यावरण संसार के सभी जीवों को लगातार स्पर्श करता रहता है। हम जो सांस लेकर छोड़ते हैं उसी छोड़ी गई सांस को पेड़ पौधे ग्रहण करके ऑक्सीजन बनाकर मानव जाति के लिए पर्यावरण में छोड़ देते हैं। ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद हमारा देश आता है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में 15 भारत में स्थित है। दुनिया के ज्यादातर देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ऐसा विकास जिसे प्रकृति सहन कर सके, इस बात पर सहमत है। सबका ये मानना है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। हम जो भी कदम आधुनिकता के नाम पर आगे बढ़ाते हैं उनको कभी भी प्रकृति और पर्यावरण के ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए उपयोग और कोयले से उत्पादित बिजली के उपयोग ने हमारी वायु को ऐसा प्रदूषित कर दिया है कि कैंसर, फेफड़े और सांस के रोग बड़ी तेजी से हमें प्रभावित करते हैं। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली आवाज ध्वनि प्रदूषण का कारण है, जो मनुष्यों की मानसिक भावना और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ती है। आज पूरे विश्व के सामने जल, वायु, भूमि और ध्वनि प्रदूषण को रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारे पर्यावरण में वृक्षों और पशुओं की जैव विविधता के कारण प्रकृति में ऐसे हजारों सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। हमारे शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और विकास ने इस संतुलन को बिगाड़ दिया है। दुनिया में बदलते हुए मौसम ने हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। 1950 के दशक के बाद हमने इससे ज्यादा महसूस किया है। वातावरण में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा सीमा से कई गुना अधिक बढ़ गए हैं। इसके लिए उपलब्ध ऊर्जा का संरक्षण एक अच्छा कदम होगा। इसके

0: अलावा घरों और अन्य निर्माण कार्यों में लकड़ी का उपयोग कम से कम होना चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण और खपत आधारित अर्थव्यवस्था को बदलना होगा। यानी कि दोस्तों, सिर्फ व्यक्तिगत और राजनीतिक कदम उठाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर जीरो CHG लागू करके जनसंख्या में नियंत्रण लाकर ही हम जलवायु परिवर्तन की इस समस्या से मुक्ति पा सकेंगे। अंधकार की ओर ले जाते हुए इस जलवायु परिवर्तन से कैसे बचाव किया जाए, इस बातचीत के बाद आइए सुनते हैं वार्ता, पर्यावरण को दूषित करने वाले कारक एवं उनसे बचने के उपाय और स्वच्छता। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं ईश्वर दयाल।
1: विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी समस्या है, जो आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में तेजी से बढ़ रहा है। इस समस्या से समस्त विश्व अवगत तथा चिंतित है। प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण या पर्यावरण में रहा है, वह दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। कहीं अत्यधिक गर्मी सहन करनी पड़ रही है तो कहीं अत्यधिक ठंड। इतना ही नहीं, समस्त जीवधारियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति और उसका पर्यावरण अपने स्वभाव से शुद्ध, निर्मल और समस्त जीवधारियों के लिए स्वास्थ्य वर्धक होता है, परंतु किसी कारणवश यदि वह प्रदूषित हो जाता है तो पर्यावरण में मौजूद समस्त जीवधारियों के लिए वह विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। ज्यों-ज्यों मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, त्यों-त्यों पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसे बढ़ाने में मनुष्य के क्रियाकलाप और उनकी जीवन शैली काफी हद तक जिम्मेवार है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने कई नए आविष्कार किए हैं, जिससे औद्योगिक एवं नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य दिन प्रतिदिन वनों की कटाई करते हुए खेती और घर के लिए जमीन पर कब्जा कर रहा है। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे न केवल भूमि बल्कि जल भी प्रदूषित हो रहा है। यातायात के विभिन्न नवीन साधनों के प्रयोग के कारण ध्वनि एवं वायु प्रदूषण हो रहे हैं। नदियों, तालाबों के जल एवं भूमिगत जल को मनुष्यों ने प्रदूषित किया ही है। प्रदूषित करने में इसने सागर के जल को भी नहीं छोड़ा। सागर किनारे कई स्थलों पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, जिससे सागर किनारे कई छोटी बड़ी बस्तियां बस गई है। वहां के लोगों का जीवन यापन पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बेचकर होता है। उन बस्तियों में किसी प्रकार के शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अगर है भी तो वे सुचारू रूप से कार्यरत नहीं है, जिसके कारण बस्ती के लोग सागर के पानी में ही शौच करते हैं तथा घर के कूड़े कचरे को भी सागर के जल में बहा देते हैं, जिससे सागर का जल प्रदूषित होता है। प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों का अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। वैसे देखा जाए तो पर्यावरण प्रदूषण चार प्रकार का है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जल समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। आधुनिक मानव सभ्यता के विकास के साथ जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। शहरों में अत्यधिक आबादी होने के कारण फ्लैट निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ी है, ताकि एक फ्लैट में 3 से 6 परिवार आसानी से रह सकें। इन फ्लैटों में कम स्थान पर पानी की आवश्यकता अधिक होती है। वहां के भूमिगत जल भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। डीप बोरिंग निर्माण करते हुए वहां के भूमिगत जल का दोहन हो रहा है। वायु प्रदूषण में देखा जाए तो महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला है। वहां 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दूभर हो गया है। मनुष्य के रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का चिल्पो, लाउड स्पीकरों का कर्णभेदक ध्वनि ने बहरे पर और तनाव को जन्म दिया है। आइए कुछ प्रदूषण के सुधार के उपाय के बारे में जानें। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए, उनसे निकले प्रदूषित मल नष्ट करने के उपाय सोचना चाहिए। डॉक्टर साधना सुनील विवरेकर ने छोटी छोटी परंतु ध्यान देने योग्य बातें बताई है, जिसमें प्रकृति के सानिध्य का सुख समझें, अपने आसपास छोटे पौधे हो या बड़े वृक्ष लगाएं, धरती की हरियाली बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हो तथा लगे हुए पेड़ पौधों का अस्तित्व बनाए रखने का प्रण ले, अपने या बच्चों के जन्मदिन हो या कोई भी यादगार क्षण, पेड़ लगाकर उन यादों को चिरस्थायी बनाए, हल्दी कुमकुम का घरेलू आयोजन हो या बड़े समारोहों में अतिथि स्वागत, पुष्प गुच्छ के स्थान पर हार पहनाने की बजाय पौधे देकर सम्मानित करें, सड़कें या घर बनाते समय यथासंभव वृक्षों को बचाएं, अत्यधिक हो तो 5 गुना पेड़ लगाकर प्रकृति को सहेजें, अपने घर आंगन में थोड़ी सी जगह पेड़ पौधों के लिए रखें, ये हरियाली देंगे, तापमान कम करेंगे, पानी का प्रबंधन करेंगे व सुकून से जीवन में सुख व प्रसन्नता का एहसास कराएंगे। पानी का संरक्षण करें, हर बूंद को बचाएं, जैसे ब्रश करते समय नल खुला न छोड़ें, शावर की जगह बाल्टी में पानी लेकर के नहाएं, गाड़ियां धोने की बजाय बाल्टी में पानी लेकर कपड़ों से साफ करें, आंगन व फर्श धोने की बजाय झाड़ू व बाद में पोछा लगाकर सफाई करें, प्रतिदिन फर्श साफ करने के बाद पोछे का पानी गमलों व पौधों में डालें, दाल सब्जी चावल धोने के बाद इकट्ठा पानी गमलों व क्यारियों में डालें, मेहमानों को पानी छोटे गिलास में दें व फिर भी पानी बचे तो गमलों में डालें, नल को टपकने न दें, प्लम्बर बुलाकर तुरंत ठीक कराएं, टंकी बहने न दें, ऑफिस हो या घर बिजली का किफायती उपयोग करें, जैसे कमरे से बाहर निकलते लाइट पंखे बंद करें, एक ही कमरे में एसी टीवी इत्यादि चलाएं, सड़कों पर देर तक जलने वाली लाइट्स बंद करें या करवाएं, विद्युत उपकरणों का समय समय से रख रखाव करें, पेट्रोल प्राकृतिक संपदा है, इसका पुनरुत्पादन बहुत लंबा है, अतः किफायती उपयोग करें, संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, एक ही दिशा में रहने वाले कर्मचारी एक साथ दफ्तर आए जाएं, देर तक रुकना पड़े तो इंजन बंद करें, पशु पक्षियों को जीने दें, इस पृथ्वी पर मात्र आपका ही नहीं पशु पक्षियों का भी अधिकार है, घर का कचरा सब्जी फल अनाज को पशुओं को खिलाएं, अन्न का दुरुपयोग न करें, बचा खाना खराब होने से पहले गरीबों में बांटें, पॉलिथीन का उपयोग न करें, सब्जी व सामान के लिए कपड़े की थैलियां गाड़ी में साथ में सदा रखें, यहां वहां थूक कर चाहे जहां मूत्र विसर्जन न करें। स्वच्छता के मुख्य संदेश इस प्रकार है, पानी किसी सुरक्षित स्रोत से ही लें या फिर शुद्ध किया हुआ पानी ही प्रयोग करें, पानी साफ रखने के लिए पानी के बर्तन ढककर रखना आवश्यक है, कच्चा या बचा हुआ खाना खतरनाक हो सकता है, कच्चा खाना धोकर और पकाकर खाएं, पका हुआ खाना पूरी तरह से गर्म करके बिना विलंब खाना चाहिए, कूड़े करकट का सुरक्षित निपटारा बीमारियों से बचाव करता है। स्वच्छता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को सार्थक पहल कर इसकी शुरुआत की और आज उनका देखा हुआ दूरगामी सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। स्वच्छ भारत का उद्देश्य व्यक्ति क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या समाप्त करना है। आइए हम सब भी मिलकर स्वच्छ भारत का सपना साकार करें एवं अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, तभी स्वच्छता अभियान सार्थकता के साथ पूर्ण होगा और हमारी भारत माता को भी गर्व हो और आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ एवं स्वच्छ होंगी, तभी एक नए भारत का निर्माण होगा। समाज को रखो साफ, भविष्य नहीं करेगा वरना माफ। इसी के साथ एक कविता के द्वारा मैं अपनी पंक्तियों को विराम दूंगा। शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की, कपड़े की झोली विकल्प है पॉलिथीन की थैली की, लहर चल रही सभी और अब मोदी के अभियान की, शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की, शौचालय के लाभ समझना जरूरत हर इंसान की, तुम्हारे कंधों पर निर्भर है सफलता इस अभियान की, शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की।
0: पर्यावरण को दूषित करने वाले कारक एवं उनसे बचने

के उपाय और स्वच्छता इस विषय पर जानकारी दे रहे थे ईश्वर दयाल। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संतोषी झा के साथ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम हमारा पर्यावरण अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8 बज चुके हैं और अब आइए सुनते हैं विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 वर्ष की चौथी कड़ी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants are Dr. V.K. Paul, former member, Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: तो
3: जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशन, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशंस को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी,
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
3: जी,
4: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूँ तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
3: जी हाँ, यह अभूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
5: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया। ये एक आमूल

0: के प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं।
1: जी
0: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयाँ, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
2: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़,
1: जी
2: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल, उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है।
1: जी
2: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज़्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, आप नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, इनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियाँ, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है, और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज़्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत PMJ के अंतर्गत हर रोज 85 से 90 हज़ार व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80 से 90 हज़ार। अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फ़ायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है, अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फ़ायदा ले रहे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको PMJ का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों को जोड़ दिया गया है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सब के लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है,

0: ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की उसके साथ जुड़ के वयो वंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज़ दाखिले हो रहे हैं और उन सब का इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहाया गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था, और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी,
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने भर से नहीं है। इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा, हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है, और अब इसको आगे ले जा कर के UN IT प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का उपयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कवरेज या पहुँच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की, और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से, और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके, तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
0: आपके सवाल में 2 हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में

0: आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों के, इन्फेक्शस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य केंद्र में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर तीन साल में, पाँच साल जैसा प्रोटोकॉल है, इस पर तीन कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई आँख का इलाज, ENT कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस, 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 170,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है, लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता है। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 120,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थी एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM से कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 120,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। ये इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि एक इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेज होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेली मेडिसिन का प्रावधान हुआ, सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयाँ, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और PHC वाले में 42 से ज़्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब ख़त्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, ज़रूरत होगी तो टेली मेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल है, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लानट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और ज़रूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर PM से जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज़ की जाँच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: यह हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में यह माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम था, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, इन सब के जो योग वो स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियाँ नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड
1: है। बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: जो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज़ है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जांपल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहाँ से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में, ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज़्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पे ध्यान दे करके उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
0: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया, और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी, 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फ़ायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है, तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा, और इसमें बहुत सेवा की ईज़ जो है, ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसे फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी हैं कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
2: वी हैव जस्ट सीन लास्ट 2 डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। वन ऑफ द की इश्यूज व्हिच हैज बीन बॉदरिंग ऑल ऑफ अस वाज स्टंटिंग इन चिल्ड्रन, एंड स्टंटिंग हैज बीन ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड एज द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। And during last between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14% points. Now this is remarkable because this is जिसको कहते हैं बिल्कुल फंसी हुई चीज थी, जिसको ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनकी पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़कर के लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वाज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
0: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया, एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं हैं, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं।

0: हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए, तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रॉन्ग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन के रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सूएज में क्या वायरसेस आ रहे। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है, और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए ये स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें कि आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।
0: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं, किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन्स जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहे हैं, एक तो गुणवत्ता की दवाइयाँ मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है, और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर VK पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. VK Paul, former member Niti Aayog, and Dr. NK Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.

0: अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 वर्ष की चौथी कड़ी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:35 हो चुके हैं। कार्यक्रम फिल्म संगीत के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

फिल्म संगीत के सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त विभा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं पहला गीत।

उपकार फिल्म के इस गाने में अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ को। शब्द रचना इंदीवर की थी और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं, स्वीकार किया मैंने इस फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना विट्ठल भाई पटेल और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम फिल्म संगीत की प्रस्तुति से अपने रेडियो दोस्त विभा को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे, तब तक रखिए अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार। कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8:45 होने ही वाले हैं। अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी दिल्ली से, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या का प्रसारण रात 8:45 पर। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रेवा ने माया चालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आले

आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक, आकाशवाणी जहां खबर मिली और खेल खिला।

0: दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
4: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूंगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अब भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे

0: देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए सबके लिए डूज और डोंट, मतलब क्या करें और क्या ना करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है, और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज़ रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज़ रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है। हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द, गलत तथ्य न जा सके, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनकी सफर की कुछ अनसुनी यादें।
2: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were
3: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मनिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे। एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपनी स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे। एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
2: This gentleman was always dressed in his crisp white kurtas. So wonderful people and great memories of that time.
1: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
4: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया। चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
5: सबसे पहले चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज, लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी, तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए समृद्ध होते हुए देखा, पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूँगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
4: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद, जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
1: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
6: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
7: हर हंसी ख्वाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
6: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
8: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
9: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन, यहाँ पर 6 सदस्य टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
4: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
1: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे, तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सकें। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
10: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरी से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए, वहाँ इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जयजी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे। और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी, हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीक चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देके उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पे तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई।

0: है उन सब SMS को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास SMS या फोन आ जाते थे और ये वो हमको वहाँ मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
1: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों के रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
2: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी 90 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ,
1: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
0: 60 70 और 80 का दशक ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
2: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को। अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ, जहां पे वो चौक करने हैं वहां पे पहुंच गया अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की। लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
1: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
0: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
3: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना। लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए। इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूँ कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत खेत में काम करने वाले जो खेती

0: हर किसान है उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण ही। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज जिस तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
1: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुँचाया ही नहीं बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिससे नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
2: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
3: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर जहां भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
2: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुँचाया।
1: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
4: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सिंह, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट टॉर्नामेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तमपुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल

0: खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक। आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
1: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
2: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, घर का सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुँचने में या लोगों तक पहुँचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
1: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
0: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर, तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: Good evening, listeners. Welcome to Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
1: Sri M.V. Subbarayudu aur Srimati M. Jalajakshi ke putra Sri M.S.N. Murthy Sangeet ke pariwesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jalajakshi स्वयं एक संगीत कलाकार रही हैं। आपने संगीत की शिक्षा संगीत साहित्य कला निधि गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एमएसएन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एमएसएन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
0: श्री एम एस एन मूर्ति's exposure to music began early. His mother, श्रीमती एम जलजाक्षी, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, श्री एम एस एन मूर्ति trained under the guidance of संगीत साहित्य कलानिधि श्री NCH कृष्णमाचार्यलु. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri M.S.N. Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri M.S.N. Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth, yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri M.S.N. Murthy has performed extensively in the country and abroad, in various prestigious centers of art and culture and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri M.S.N. Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramana Murthy on the mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Saket Pantula.
1: Vidwan Sri M.S.N. Murthy aaj ke karyakram ka aarambh kar rahe hain. Athana raag mein Purandar Das ki rachna Sakala Grah Vala Neene se, jo ki Khanda Chapu Taal mein nibaddh hai.
0: Sri M.S.N. Murthy begins this evening's concert with a kriti of Purandar Dasa. It is an Athana Ragam Khanda Chapu Taalam.

0: श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमो, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। He is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramana Murthy on the Mridangam and Vidwan Sri M. Haribabu on the Ghatam. Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

क्या था सन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। That was Tanyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

तक आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramana Murthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।